0: वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केंद्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयासहि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा सर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं सर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का

0: करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to

0: तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है, खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
4: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
5: पर क्या कर सकते हैं?
4: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
6: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
7: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
8: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
7: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
8: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
7: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
8: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
7: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
8: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
7: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
8: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
7: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
3: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
9: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
10: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
9: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
10: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
11: यारो वन बाजी यारो वन।
9: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
10: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
12: सुनो सजना
10: पयामे सुबह।
13: अस्सलाम वालेकुम सामीन, सुबह खैर, खुश आमदीद। 12 मई 2026 मंगलवार का दिन, एक और उम्मीद भरी नई सुबह के साथ हम हाजिर हैं। अल्लाह करी नई सुबह आपके लिए ढेर सारी खुशियों का पैगाम लेकर आए। सुबह का वक्त दरअसल एक नई शुरुआत का नाम है, ये वो लम्हा है जब हम अपने कल की गलतियों को पीछे छोड़कर एक बेहतर आज की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद वानी, और मेरे साथ हैं मेरे साथी तबरेज़, कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर मामूर हैं मंजूर अहमद, और जावेद अहमद हमारी मावनत कर रहे हैं, खुर्शीद अहमद और सरफराज खान, प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह।
14: समीन अस्सलाम वालेकुम, और आज की सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि शबीर ने पहले ही बता दिया आपसे कि आज आपके साथ हम दोनों रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो सुबह का आपका आज का आगाज हो ये बेहतर हो, और कोशिश करेंगे कि आपकी सुबह में कुछ खूबसूरत रंग हम भर दें। समीन ये पयाम सुबह प्रोग्राम है, उसे आप ठीक 7:10 से 11:30 तक सुनते हैं। इसमें मुख्तलिफ मौजूआत पे

0: बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम रोशनी डालें कुछ ऐसे मसलों पर, ऐसे बातों पर जिन पर कहीं ना कहीं हमारी नज़र तो जाती है लेकिन देखकर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में ये जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, इसमें हर तरह से कोशिश की जा रही है कि हम हमारे जवानों को इस नशे से बचाएं, इससे उनकी ज़िंदगी को सेव करें, सेफ गार्ड करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब देखकर इसे अब भी अनदेखा कर रहे हैं
1: जी।
0: ये सोचकर कि चलो ये तो हो रहा है और मेरे घर में नहीं है, अल्लाह ना करे अगर आपके घर में हो तो तब आप क्या करेंगे। इसलिए आपके घर में ना हो उसके लिए आपको आज ही कदम बढ़ाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हुकूमत की मदद करनी पड़ेगी इस नशा मुक्त भारत अभियान में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देकर, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को इस वबा से पाक कर दें। और साथ ही साथ कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम ऐसा माहौल पैदा करें जहां पर हम लोगों को जज न करें। हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, हमारी सिर्फ कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सुने। ऊपर वाले ने हमें दो कान शायद इसीलिए दिए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने, और एक ही मुंह दिया है, एक ही लब है कि हम अपना मुंह खोलें तो कुछ बेहतर बोलें और मैक्सिमम सुनकर उस पर अमल करें। और इस तरह से अगर हम कोशिश करेंगे तो आजकल जो हमारे जवान हैं, जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो बात करने से कतराते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं उन्हें डर रहता है कि हमें जज किया जाएगा, और जो ही वो जज हो जाते हैं तो वो मुजरिम करार दिए जाते हैं। उनकी गलती हो या ना हो, उन्हें मुजरिम करार देती है सबसे पहले उनकी फैमिली। और जब इस तरह का माहौल बनता है तो उन फैमिलीज में ये बच्चे जो हैं ये कट जाते हैं उन फैमिलीज से, और अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते। लेकिन हमें आगे बढ़कर इनसे बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें सपोर्ट करें। अब अगर जो गलती इनसे हो गई है वो हो गई है जाने या अनजाने में, लेकिन उसके बाद अगर हम उसी बात को लेकर बैठेंगे तो फिर मसलों के हल नहीं निकलेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें मौका दें, इनको सुने और इनके मामलों को हल करने की कोशिश करें
1: जी। अपने आप को बचाने के लिए हमें दूसरों को बचाना होगा, क्योंकि ये मनुष्यात की जो लत है ये रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मगर हुकूमत ने जो हाल ही में एक अच्छा कदम उठाया है कि ये जो पद यात्रा निकाली है, इससे अवेयरनेस हुई है लोगों में कि ये मनुष्यात का जो ये कारोबार है इस पर रोक लगनी चाहिए और हमें अपने आप को बचाना होगा जी।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये कोशिश हम सबको मिलकर करनी होगी, और जब हम मिलकर कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बदलती हैं। आज शबीर काफ़ी सारे खास दिन हैं जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम आज सबसे पहले इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये एक ऐसा दिन है जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर मरने तक ये नर्सेज के कॉन्टैक्ट में हम आते हैं
1: जी।
0: शायद नर्स ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो पैदा होने पर माँ से पहले इस बच्चे को संभालती है, माँ से पहले जो पहली गोद इसे मिलती है वो इसी कहीं ना कहीं इसी नर्स की होती है, जो इसे संभालती है, इसे इस नन्ही सी जान को उठाकर एक पालने में रखती है या उस माँ के हवाले करती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि उस माँ जो माँ जन्म देती है
1: जी,
0: उससे पहले एक नर्स ही होती है जो इस बच्चे को कहीं ना कहीं वो शफकत भरी बाहें, वो शफकत भरा माहौल या शफकत भरी वो मोमेंट देती है, जब इसको ये अपने गोद में लेकर फिर जाकर ये किसी पालने में रखती है या कहीं ना कहीं अपनी माँ के हवाले कर देती है, या उस घर के जिस घर में ये बच्चा पैदा हुआ तो उन घर वालों के हवाले करती है। लेकिन पहला कॉन्टैक्ट जो इस दुनिया में आते ही इस बच्चे का होता है डॉक्टर के अलावा, वो नर्स ही होती है।
1: बिल्कुल, जमीनी सतह पर तो नर्सेज ही काम करते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर तो माशाल्लाह ये ट्रीटमेंट कर लिखते हैं, और जमीनी सतह पर जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो इससे हमारा राबता बनता है इनसे, नर्सों से। ये हमारे बच्चों की केयर करते हैं और हमारा भी केयर करते हैं, मगर अक्सर देखा गया है कि इमरजेंसी में जब हम कोई पेशेंट लेके जाते हैं तो हम उनके साथ बेअदबी करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपना पेशेंट नजर आता है वहां पे, मगर उनके लिए तो सारे एक जैसे होते हैं।
0: आज जहां एक तरफ हम नर्सेस डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे, वहीं आज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स एप्रिसिएशन डे भी है। आज हमारे पूरे मुल्क में हम एक और दिन मना रहे हैं जो

0: ही खास है, जैसे हम हॉस्टल डे कहते हैं, नेशनल हॉस्टल डे भी आज हम मना रहे हैं, 12 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा आज के दिन जो यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है वो भी आज के दिन कंक्लूड होता है, आज उसका आखिरी दिन रहता है, जिसमें भी लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो रोड सेफ्टी है यूएन ग्लोबल लेवल पर इस पर नजर डाली जाती है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि ये हादसात जो होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, उनको कैसे हम बचाएं, उनको कैसे अवेयर करें, ताकि ये जो जानें हैं हमारी, जो बेशकीमती जानें हमारी चली जाती हैं, उनको हम किसी तरीके बचा लें।
1: और आज इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ भी मनाया जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये जो अभी हमने बात की नर्सेस डे की, ये डे जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पैदाइश के मौके पर, कि जी हाँ, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई को, जी हाँ, 1820 में पैदा हुई थी, ताकि नर्सों की खदमात को खराज तहसीन पेश किया जाए। उनकी पैदाइश इटली के शहर फ्लोरेंस में हुई, इसी वजह से उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया। वो खासतौर पर क्राइमीन वार के दौरान जख्मी फौजियों की खदमत की वजह से मशहूर हुई। उन्होंने अस्पतालों में सफाई, बेहतर इलाज, मरीजों की देखभाल के उसूल मुतारिफ करवाए, जिससे हजारों जानें बची। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है, क्योंकि वो रात के वक्त चिराग लेकर मरीजों की खबरगिरी करती थी। इंटरनेशनल नर्स डे 2024 का थीम है Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives। ये मौजू इस बात पर जोर देता है कि अगर नर्सों को बेहतर सहूलियात, महफूज माहौल और कयादत के मौके फराहम किए जाए तो वो सेहत के निजाम को ज्यादा मजबूत और मौसर बना सकती है। तबरेज इसी मुहिम का पैगाम है कि जब नर्सों को मुकम्मल ताउन, जदीद तरबियत और एतमाद दिया जाता है तो वो मरीजों की बेहतर देखभाल करती है, जिससे मरीजों की हिफाजत और इलाज के नतायज बेहतर होते हैं। 2026 का मौजू सिर्फ नर्सों की तारीफ तक महदूद नहीं, बल्कि हुकूमतों और इदारों से मुतालबा करता है कि महफूज काम का माहौल फराहम किया जाए, जहनी सेहत की सहूलियात बढ़ाई जाए। इस मुहिम का मकसद ये भी है कि नर्सों को तबी फैसलों और सेहत से मुतलिक पॉलिसी साजी में अहम किरदार दिया जाए, ताकि उनकी आवाज मौसर अंदाज में सुनी जा सके। हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबल मुहिम का तसलसल ये मौजू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की कई साल आर्मी मुहिम का हिस्सा है। तबरीज जिसमें पहले नर्सों की माशी ताकत और उनकी फला व बहबूद जैसे मौजूद पर तवज्जो दी गई थी, ये आलमी मुहिम हुकूमतों, अस्पतालों और सेहत के इदारों को इस बात की तरफ मुतवज्जो कर दिया कि वो नर्सिंग के शोबे में सरमायाकारी करें, ताकि मुस्तकबल में सेहत का निजाम ज्यादा मजबूत, महफूज और पायदार बन सके।

0: सुमीन आप सुन रहे हैं हमारा लाइव शो पयाम सुबह और मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ हैं तबरीज़ मद्दी। तबरीज़ आज 12 मई के मौके पर दुनिया भर में दायमी थकन और ऐसा भी अमराज का आलमी आगाही दिन भी मनाया जा रहा है। ये दिन ख़ास तौर पर उन बीमारियों के बारे में शऊर बेदार करने के लिए वक्फ है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर मरीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगियों को शदीद मुतासिर करती है। दायमी थकन का सिंड्रोम एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान मुसलसल थकन महसूस करता है और आराम करने के बावजूद भी इसकी तवानाई बहाल नहीं होती। इसी तरह फाइब्रोमायलेजिया एक बीमारी है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द, नींद की खराबी, ज़हनी दबाव और कमज़ोरी जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। बाज़ मरीज़ों को यादाश्त की कमज़ोरी, तवज्जो मरकूज़ करने पर दुश्वारी और एसाबी मसाइल का भी सामना रहता है। इन बीमारियों की चंद नुमाया अलामत ये हो सकती हैं: मुसलसल और गैर मामूली थकन, जिस्म और पट्ठों में दर्द, नींद पूरी होने के बावजूद कमज़ोरी, सरदर्द और चक्कर आना, ज़हनी दबाव और बेचैनी, यादाश्त और तवज्जो में कमी। माहिरों के मुताबिक बहुत से लोग इन बीमारियों को आम कमज़ोरी या सुस्ती समझ लेते हैं जबकि हकीकत में एक संजीदा तबी मसला है। ज़रूरत इस बात की है कि मरीजों को हमदर्दी, तवज्जो और मुनासिब इलाज फराहम किया जाए। जी तबरेज़,
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए कि आज ये ख़ास दिन भी मनाया जाता है। और सामिन, जो बात हम कर रहे हैं मुख्तलिफ दिनों के हवाले से, इसमें एक ख़ास दिन जो हमने बात की थी कि आज वर्ल्ड जो हम नेशनल प्लांट हेल्थ डे भी मना रहे हैं, पेड़ों की जो सेहत है उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, नेशनली एंड इंटरनेशनली तमाम छोटे बड़े मसलों पे नज़र डाली जाती है, उन पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाया जाता है। जहां हम इंसानों की हेल्थ की बात करते हैं वहीं हमारे इस इकोसिस्टम का हिस्सा पेड़ भी हैं और उनकी सेहत भी बनी रहे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और उनकी सेहत बनी रहने के लिए अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो डेफिनेटली काम किया जा सकता है। करना कुछ भी नहीं है, हम किसी भी पेड़ को अडाप्ट कर लें। जैसे हम देखते हैं हमारे शहर में पेड़ बहुत कम हैं लेकिन जितने भी हैं अगर हम एक एक पेड़ को ही अडाप्ट कर लें, अब हम पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है लेकिन जो पेड़ लगे हुए हैं अगर उनकी देखरेख हम करें, उनकी हम खिदमत करें, उनको पानी दें और देखें कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा, अगर कीड़ा लगा है तो माहिरीन से बात करके मशवरा करके उस पेड़ की जो है ट्रीटमेंट करवाएं, और इस तरह से हमारे पेड़ बने रहेंगे और जब तक ये पेड़ बने रहेंगे तब तक हम लोग सही तरीके से सांस ले पाएंगे। कोशिश यह करें कि इस करो रल मिल ये खिदमत आने ماجہ ہز کیاز کہ زمین چھ سو موج تی ات ماج پٹھ یم کل کٹ چھ یم بچاو تیل روزو اس ٹھیک یل یم بچت اس تہ بچو نہ کہین بالکل

पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे नशर होगा, पंजाबी प्रोग्राम पेश होगा सपहर 4:30 पर, गोजरी प्रोग्राम शाम के 5 बजे पेश होता है। शाम 6:10 पर देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे, शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7 बजे और प्रोग्राम वादी की आवाज़ रात के 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता है। समय नहीं है आज हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।

0: प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की

0: समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर और इसमें आप सुन रहे हैं पयाम सुख। तबरीज, आपने सुना होगा लफ्ज इंट्रोवर्ट।
3: बिल्कुल,
2: इसका मतलब है अपने आप में मगन रहना, या आम लोग कह रहे हैं कि ये शर्मिलापन भी कहा जाता है। मगर हमें मालूम होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट यानी अपने आप में मगन रहना और शर्मिलेपन में बहुत फर्क है।
3: बिल्कुल, इंट्रोवर्ट बच्चे काफी होते हैं जो अपने आप में ही गुम होते हैं, जिनको कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन शर्मीले बच्चे वो होते हैं जो डेफिनेटली शर्माते हैं, मिलने से कतराते हैं, लेकिन वो मगन नहीं होते।
2: बिल्कुल, एक इंट्रोवर्ट बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, जबकि शर्मीला बच्चा जरूरी नहीं कि अकेलेपन को पसंद करे। अलबत्ता ऐसे बच्चे लोगों के साथ मिलने से इसलिए कतराते हैं कि शायद उन पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। किसी तकरीब में अगर इंट्रोवर्ट बच्चा मौजूद हो तो वो खामोशी से बैठकर सब कार्रवाई देखता रहता है।
3: बिल्कुल सही।
2: और किसी काम में बगैर जरूरत हिस्सा नहीं लेता। अलबत्ता एक शर्मीला बच्चा खुद को बेचैन महसूस करता है, वो हिस्सा तो लेना चाहता है मगर उसे डर रहता है कि उसे कबूल किया जाएगा या नहीं।
3: बिल्कुल सही। देखिए, इंट्रोवर्ट बच्चों में ये रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अपने आप में थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस का लैक रहता है, कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है, पता नहीं मुझे कैसे देखा जाएगा, कहीं मैं कुछ कर दूं तो गलत ना हो जाए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम होता है, और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल उनके पेरेंट्स अदा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको जज ही करते हैं। और जब ये जजमेंट का सिलसिला चलता है और उसमें ही हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं।
2: शर्मीले बच्चों को हौसला अफजाई करके इस शर्मीलेपन से बाहर तो निकाला जा सकता है, मगर अपने आप में मगन रहने वाले बच्चों के लिए यह अमल मुश्किल है।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि अपने आप में मगन रहना उनकी फितरत में होता है और फितरत कभी बदलती नहीं है।
3: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यहां पर मैं तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उन्हें मौका दें। उनसे गलतियां होंगी, वो गलतियां करेंगे, उन गलतियों को सुधारें, उनको सही करें, उन्हें बताएं सही और गलत का फर्क, समझाएं। उनका कॉन्फिडेंस अप होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और वो एक वक्त इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही बच्चा है जो कल तक बात करने से शर्माता था या बात करने से कतराता था।
2: इंट्रोवर्ट बच्चे नहायत बारीक बीनी से मुशायदा करते हैं और अपने ख्याल का इजहार करने के बजाय दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। वो उनमें तख्लीकी सलाहियत होती है, मगर वो अपनी सलाहियत को तभी इस्तेमाल करते हैं जब उनका दिल चाहता है।
3: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यहां पर

0: हम भी देखते हैं आजकल समाज में काफी सारे बच्चे, अब जो हमारे आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनमें काफी बच्चों की तादाद जो है इंट्रोवर्ट बच्चों की तादाद है।
1: ऐसे बच्चे आसानी से अपने जज्बात और एहसासात का इजहार नहीं करते और अपने मसाइल के हवाले से किसी की मदद लेने के बजाय खुद हल करना पसंद करते हैं। अपने आप में मगन रहने वाले बच्चे वो अमल करना पसंद करते हैं जिसमें कोई दूसरा शरीक न हो। वो ऐसे मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जहां उन्हें अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिले।
0: बिल्कुल सही। और सामने से गुजारिश इस बात की भी कि अगर आपके बच्चे घर में कोई भी कोशिश करते हैं, चाहे किचन में, चाहे आर्ट में, चाहे म्यूजिक में, चाहे खेलों में, तो उन्हें मौका दें। जब आप उनका मौका देते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, वो अपनी गलती सुधारते हैं, तो वो दिन ब दिन बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए।
1: तबरेज,
0: बिल्कुल
1: वालदेन को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को तनकीद का निशाना न बनाए।
0: सही।
1: मसलन, आप दूसरों की तरह क्यों नहीं हंसते बोलते हो, या आपका काहिलों की तरह क्यों बैठे रहते हो। उन पर तनकीद करने के या दबाव डालने से मसला हल नहीं होगा। ऐसे बच्चों को कमतर समझना हमारी गलत फहमी है। ऐसे
0: बिल्कुल
1: बच्चों को वक्त दें, वो कुछ करने दें जिसमें वो दिलचस्पी रखते हों। दूसरी की तरह बनाने के बजाय कुदरत ने उन्हें जिन सलाहियतों से नवाजा है उन सलाहियतों को निखारने में उनकी मदद करें ताकि वो अपनी जिंदगी खुश असलूबी से गुजार सके।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कहीं ना कहीं जो हम बच्चों को कंपेयर करते हैं आजकल, हम बच्चों से ये कहते हैं कि वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ जो कंपैरिजन होता है, इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो
1: जी
0: टूट जाता है अंदर से, और कहीं ना कहीं वो दिन ब दिन पीछे हो जाता है। और सामिन, हम कोशिश अक्सर करते हैं कि हम आप तक बेहतर से बेहतर मालूमात लेकर आए, और मालूमात के साथ साथ हमने एक छोटी मोटी रेसिपी भी आपसे शेयर करनी होती है। पिछले एपिसोड में हमने एक चीला शेयर किया था जिसमें हमारे साथी शेफ यासीन जुड़े थे, उनने आपको बताया कि किस तरह से हम वेजिटेरियन चीला बना सकते हैं, और यकीन माने मैंने कल घर में वो ट्राई किया, मैंने बच्चों को खिलाया, बहुत अच्छा बना था, बच्चों ने बहुत तारीफ की, और आज भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे साथी शेफ यासीन। आइए आज जानते हैं कि वो क्या लेकर आए हैं हमारे सुनने वालों के लिए और खासकर हमारे इन नौनिहालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: यासीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे पयाम सूट प्रोग्राम में।
2: थैंक यू वेरी मच। जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी है, हालांकि आज फिर से प्लेजेंट वेदर है,
0: जी,
2: लेकिन बच्चे अक्सर आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे जो बच्चे हैं उनकी मांग को ठुकराना भी अच्छा नहीं है। आप आज के बाद 2-3 केले को छील के रखे, उसको स्लाइसेस करके फ्रीजर में रख दीजिए। मतलब अब आपके पास हमेशा फ्रीजर में ये केले रहने चाहिए, पहले खत्म हो गए वापस भर दिए, तो ये बन जाएंगे बहुत हार्ड। जब भी बच्चा आइसक्रीम की डिमांड करे, इन हार्ड केले के स्लाइसेस को डालिए आप ग्राइंडर में, उसमें डालिए थोड़े से किशमिश या बादाम और थोड़ा सा मोटा हंक डाल दीजिए, चाहे तो आप थोड़ा सैफरन भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से चर्न करें, जब आप इन्हें घुमाएंगे ग्राइंडर में एक थिक पल्प बनेगा, एकदम बढ़िया सी रेडी टू ईट आइसक्रीम बन जाएगी। ये आप मैंगो के साथ भी कर सकते हैं। तो आज के बाद आइसक्रीम से डरिए नहीं, हमेशा तैयारी रखिए। बच्चे ने मांगा, जब तक वो यूनिफॉर्म निकाल रहा है उसकी आइसक्रीम तैयार।
0: वाह क्या बात है, इतनी छोटी सी रेसिपी और इतनी प्यारी सी रेसिपी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये रेसिपी शेयर करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से मैंने चीला ट्राई किया उसी तरह हमारे सुनने वाले ये आइसक्रीम जरूर ट्राई करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच।
0: तो सामिन, ये थे हमारे साथी शेफ यासीन जिन्होंने आज ये छोटी सी रेसिपी बताई, और हमें उम्मीद है कि आप इसे ट्राई जरूर करेंगे।

0: सारा ने अपने नगमा सुना और हम बात कर रहे थे बच्चों की। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इनकी नशोनुमा करना हमारा फर्ज बनता है। कोशिश हम यही करें कि बच्चों को मौका दें और रात को खास तौर पर। आजकल हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता, दोनों पेरेंट्स माँ भी बाप भी जॉब में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जो है जो उनकी आमदनी है उसे बढ़ाएं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वक्त मारा जाता है बच्चों का जो उनका हक होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शाम को जब हम घर लौटें तो अपने मोबाइल फोन्स को साइड में रखें,
1: बच्चों के साथ
0: वक्त बिताएं, उनके साथ बात करें, उन्हें पूछें कि पूरे दिन में उन्होंने क्या किया, किस तरह किया। तो उससे क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि वो कहीं सुना जाता है, उसे लगता है कि मैं कहीं पर अहम हूं, उसकी अहमियत उसको महसूस होती है। और ऐसा नहीं है कि वो अहम नहीं है, वो अहम है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक्सप्रेस करें तो काफी सारे मामले जो हैं वो आसान हो जाएंगे,
1: दबाव कम हो जाएगा
0: बच्चों पर। ये चीज

0: और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जरे मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बाईस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
0: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कार पुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वो आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉक्टर शर्मा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधानी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला शिरकत करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्जाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसिपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के छह रोजा दौरे पर रवाना होंगे। यह दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप

0: भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताजा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमित असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: ईरान के मुतालबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों की बजाय जंग के हालात और इक्तसादी सूरतेहाल पर मबनी है जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इक्तसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज्यादा ड्रोन्स और मिजाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अहम तंसीबात और तवानाई के मराकज पर हमलों के जवाब में बैनुल अक्वामी कानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमात गैरकानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के ताउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक्स पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में वाकई हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी

0: तवज्जो फरमाएं। अगर आप अपनी औलाद के निकाह और शादियां मसनून तरीके पर बगैर किसी इसराफ, जहेज के लेन देन या दीगर बुरी रसूमात से पाक साफ कराने के ख्वाहिशमंद हों, तो आज ही हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छतरबल श्रीनगर या ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करण नगर श्रीनगर से राबता करें। मोबाइल नंबर 9541414058।
1: सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। हम सफर प्रोग्राम ब्याख शुमार तुंदिस खदमत में हाजिर। बुस तुंद मेजबान फयाज अहमद फयाज, तो सूडियो मे तशरीफ फरमा हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल हिंद सरपरस्त तो सरबरा, तो सानी ये में प्रोग्राम रूह रवा उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना फयाज।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब सामीन, आज मंगलवार है, 24 जिलकदर 1447 हिजरी, मुताबिक 12 मई सन 2026 ईस्वी। मुकामी रोजनामों की सुर्खियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरे साथी तबरेज मदनी। समीन, श्रीनगर से आज शाये हुए मुख्तलिफ रोजनामों ने अलग अलग खबरों को अपनी शेयर सुर्खियों में जगह दी है। आगाज में खास खबरों पर एक नज़र। इनसारी की तरफ कदम बढ़ाए, वजीर आजम मोदी की 7 अपीलें। अवाम से ईंधन बचाने, गैर जरूरी अखराजात कम करने और वोकल फॉर लोकल को फरोग देने की अपील। हर नौजवान लड़के और लड़की में गैर मामूली सलाहियत है। भारत को ऐसे नौजवान चाहिए जो पुराने सांचों को तोड़कर नई राहें तराशें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल आरोहण 2026 का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात गैर यकीनी का शिकार, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट पर फैसला जेर इल्तिवा, वोटर फहरिस्तों में 3% इजाफा। हतमी इंतखाबी फहरिस्त 20 मई को जारी होगी। हुकूमत ने इंतखाबात के लिए ताहाल टाइमलाइन नहीं दी।

0: और आखिरी रोजनामा खबर कुछ इस तरह से कि आईएफएल 2025-26 रियल कश्मीर डिफीट आइजवाल एफसी टू एंड कैंपेन ऑन अ हाई। और इसी अखबार से आखिरी खबर, सीनियर ओपन रैंकिंग रेसलर दीपक पुनिया सिक्योर 92 केजी गोल्ड एज द फ्री स्टाइल स्टेशन सेंक्शन कंक्लूड्स। तो इस तरह से आज के अखबारों से ये सुर्खियां हुई मुकम्मल। प्रोग्राम पयाम सुबह जारी है, हमारे साथ बने रहिए।
1: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: ट्रांसमिशन पहुंचाने में। हम बात कर रहे हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की, आज इसका आखिरी दिन है। जी हाँ, आज ये जो ग्लोबल वीक है, रोड सेफ्टी वीक, आज ये बंद हो जाएगा। लाइक बंद इन द सेंस, ये कैंपेन जो है ये क्लोज होने जा रही है। और इस कैंपेन का मकसद भी यही है कि हम जो ये हर रोज रोड एक्सीडेंट्स में लोग अपनी जानें गंवा देते हैं या अपने कहीं ना कहीं अपने ऐसे अज्जा गंवा देते हैं कि जिंदगी भर के लिए वो पछतावे में आ जाते हैं। शबीर, हमारे बच्चे जो हैं आजकल, जो छोटी उम्र में राइड करना स्कूटर, स्कूटी, बाइक, और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं उनके कि हमारे छोटे बच्चे गाड़ी चला लेते हैं, जबकि अंडर एज बच्चों को गाड़ी चलाने का हमें कभी भी मौका नहीं देना।
1: और अगर देखा जाए तो वालदेन ही इसके जिम्मेदार,
0: वालदेन ही जिम्मेदार है। और अगर आपको याद हो, आज से कुछ वक्त पहले ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें हमारे वालदेन पर ही केस डाला गया था और उन्हें उनके खिलाफ FIR लगा था।
1: ये बच्चा
0: अंडर एज था, बच्चा छोटा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इस तरह से हमारे वालदेन को चाहिए तिमन पाइजे कोशिश करें कि लक्टन बचन दिन न पोछर किए कि तिम चलावन गर्ड, तिम चलावन बाइक,
1: इस काल से तिम पन्ने वैसे बात
0: तिम पन्ने वैसे बात क्या है कि वैसे बात उन चुनते विद्युत किए कि वैसे वैतत छि तिम गर्ड हिचान। हालांकि लक्ट बच्चा आजकल गर्ड आसान वारी असल चलावा, मगर इछु साइंटिफिकल तिते इछु मजहबी तौर ते कि
1: तेज फहम फरासत कुछ छु,
0: यस मकसद छुट्टी कि इमन छात उता जहन डेवलप गोमुत कि ना
1: इम हकन गर्ड चला
0: गर्ड चला तार मुजुब शायद कोशिश करें कि इस दिमो बचन तेली गर्ड चलाम यम साथ तिम अर्धा वरी कंप्लीट आसन गमित
1: इम सत क्या छु गसन इम सत छु बेई गसन इम छु पान एक्सीडेंट करान तो मगर बिक्स यास ये यो सी फैमिली से सच मुतासिर गसन।
0: बिल्कुल सही, तार मुजुब पाइज ख्याल थाउन पनन लक्टन बचन पाइज ने मौका दुन के इतपट गर्ड चलानस, बाइक चलानस, स्कूटी चलानस, तिमन पाइज कोशिश करें कि अर्धा वरी कंप्लीट गसन पते सोजोक तिम कुन ड्राइविंग स्कूलस मस या कोशिश करो कि तिमन दिमो लाइसेंस गोड अप्लाई करना, अप्लाई करना पत कर तिम ट्राई अपियर ट्राई दिन पत यु तिमन लाइसेंस मिले तम पत ही गसन तिम गर्ड चलावे या तम से रोज तिम तम से रोजन तिम ते सेफ ते तम से रोज तिमन सुत सुत सोन ओन पकिम लुक पकान छ सड़कन पे
1: तिम ते रोजन
0: सेफ। बिल्कुल।

0: जो पेडेस्ट्रियन रोड के साइड पे चल रहे होते हैं या रोड क्रॉस कर रहे होते हैं उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दें ताकि वो सेफली रोड क्रॉस करें, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते रहते हैं कि पेडेस्ट्रियन की कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। वो उस जगह पे क्रॉस करते हैं जहाँ पे डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग स्पॉट्स नहीं होते हैं
1: जी,
0: तो दे आर वेरी हाई रिस्क जोन, वहां पे अक्सर ये हादसे होते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें पेडेस्ट्रियंस को भी एजुकेट करने की जरूरत है और जो गाड़ियों में ड्राइवर बैठे होते हैं ड्राइव कर रहे होते हैं उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है।
1: हजीब साहब, अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सिनेरियो क्या है?
0: देखिए कश्मीर में ओवरऑल आप देखें एनुअली तकरीबन 700 से 800 के लोग एक्सीडेंट्स में एनुअली मारे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा इशू डिफरेंट है, यहाँ मोस्टली जो हिली एरियाज हैं
1: जी
0: वहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जो सिटी और टाउन्स हैं वहां पे उतना ज्यादा नहीं है जो पेडेस्ट्रियंस हिट होते हैं, उसकी तादाद बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सिटी के अंदर आप देखें तो हाई स्पीड पे गाड़ियां नहीं चलती हैं
1: जी।
0: लेकिन जब बाकी कंट्रीज में आप देखें वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है
1: जी
0: यहाँ बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है तो कहीं ना कोई हिट हो जाता है।
1: तो यहाँ पर लोगों को कैसे अवेयर करते हैं आप, खासकर अब जब जब से हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स लग चुके हैं, लोगों को ये नहीं पता कि जब सिग्नल रेड होती है हमें तब रोड क्रॉस करनी है या जब ग्रीन होती है तब क्रॉस करनी है, तो उन्हें कैसे अवेयरनेस देते हैं आप?
0: देखें अगर आप एक ड्राइवर होल्डर या ये लाइसेंस होल्डर है तो उस ड्राइवर के नॉलेज में तो हर चीज होनी चाहिए कि मुझे गाड़ी सिग्नल पे किस रोकनी है और किस वक्त मुझे आगे चलना है, वो तो कोई ज्यादा बड़ा मुझे लगता नहीं उसमें कोई।
1: सर मैं पेडेस्ट्रियंस की बात कर रहा था,
0: आई
1: एम सॉरी, मैं
0: पेडेस्ट्रियंस
1: जी।
0: यहाँ पे भी कुछ इश्यूज है, अगर आप एक रोड स्ट्रेच ले लें
1: जी
0: व्हाट्सएप से लेके एक बैंक हेडक्वार्टर तक कभी आप चल के देखें
1: जी,
0: आप देखेंगे कि हर जगह से लोग रोड
1: क्रॉस कर जी, सही,
0: उस वजह से ट्रैफिक की स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन ये एक डेंजरस ट्रेंड है जिसको मैं अभी सिचुएशन इसमें हमें
1: जी मुझे लगता है फोन सिग्नल शायद वीक है। हसीब साहब एक्चुअली ट्रैवलिंग में हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया, हसीब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डिया जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और हमें भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा ताकि हम बेहतर ज़िंदगी जी सकें और हर किसी को मौका दें कि वो सड़कों पे चलें। न सिर्फ ड्राइवरों की ये ज़िम्मेवारी है बल्कि ये हम पेडेस्ट्रियंस की भी ज़िम्मेदारी है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी भी ज़िम्मेवारी है कि उन्हें ये मालूम हो कि वो कहाँ पे चल रहे हैं, उन्हें कहाँ चलना है, कब चलना है, कब रोड क्रॉस करनी है, रोड क्रॉस करनी है तो कहाँ पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए तो तभी जाकर हम इन हादसों से बच सकते हैं। आइस पाइज कोशिश करें कि बचन पाइज लोग चार पान पैठे ये तलीम दीन क्या इस कदम सड़क के तारू शबी सब तुच्च वुछान लसो इन बच सड़क क्रॉस करान तिमन देशन पाई आसान सड़क कतन च क्रॉस करें, तो यम सात सिग्नल रेड छ आसान एकस साइडस सु साइड छ आसान बंद ट्रैफिक खतर तम सात हको इस सड़क के तेरत, मगर यम सात ततन ग्रीन छु गसान तम सात छु ने हकुन ऐसे कोशिश करें पैदल तेस पाइस रुकुन जिस का सिग्नल रेड गइस, ते मे छु बासान ते अगर ये अवेयरनेस इस मजी तेस बचो वरियो हित सुनिश।

जी आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 77.88 मीटर, FM 71.5 MHz। सामीन, 10 बजे वलियो तुहनिस खदमत अस्मज करो पेश सूफी सदा।

सूफी सदा यु प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोझान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोहा आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

और इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं जो हम पेश करते रहते हैं आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सूफी बुजुर्गों की जिंदगी के बारे में प्रोग्राम सुना, सूफी सदा, और अब वक्त हो चला है कि आप तक ये इंटरेक्टिव सेशन पहुंचाएं, जो ठीक 10:30 से 11:30 तक चलता है। एक घंटे का सेशन रहता है जिसमें हम मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाते हैं और बात होती है किसी अहम मौजू पर। आज भी एक अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे, एक खास मेहमान से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक मेहमान हमारे स्टूडियो नहीं पहुंचे हैं, ऑन द वे हैं, कुछ देर में हमारे साथ होंगे। जब तक वो आते हैं तब तक आपके साथ बने हुए हैं आपके मेज़बान, जी हाँ, मैं आपका मेज़बान तबरेज मदनी, और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी शाहीना ऋषि। तो फिलहाल एक बहुत ही प्यारे से नगमे के लिए यहाँ रुकते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत।

0: जी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, पंजाबी ट्रैक, और उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद फरमाया होगा।
1: तो तबरेज़, आज हम बात कर रहे हैं
0: जी
1: जो बहुत ही ख़ास दिन के हवाले से, क्योंकि उन लोगों की आज हम बात कर रहे हैं जो हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत के साथ खड़े रहते हैं। एक ऐसा दिन हमें याद दिलाता है, तो ये लोग जो है, जैसे कि हमने अभी कहा, ये चुपचाप अपनी मेहनत का सबूत देते हैं, अपनी मेहनत से। तो आगे यही कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को हमारा सलाम।
0: बिल्कुल सही, हम सलाम पेश करते
1: क्योंकि
0: हैं।
1: जितने हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे वो
0: कम
1: है।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: सही।
1: हर बार ये लोगों के काम आते हैं।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही फरमाया। और कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि जब हम एक नर्स से मिलें तो उससे खलूस से मिलें, उससे तमीज से मिलें, प्यार से मिलें। ये याद रखें कि ये वही नर्स है जिसने मुझे मेरी माँ के पहले, पैदा होते ही मेरी माँ से पहले जिसने मुझे अपनी गोद में लिया था। तो मुझे ये याद रखना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नर्सेज पर बहुत प्रेशर रहता है। उनके लिए आप सिर्फ अकेले पेशेंट नहीं हैं, उनके पास सैकड़ों पेशेंट्स होते हैं जिनकी वो खिदमत कर रहे होते हैं। तो हमें समझना चाहिए, उनकी मेंटल स्टेट भी समझनी चाहिए, और उनसे हमेशा खलूस और प्यार से बात करनी चाहिए।
1: तो आज का दिन इसीलिए जो मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है इनकी जो हमदर्दी है उसको सलाम किया जाता है, और उसको याद किया जाता है, उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है, और हम तस्लीम करते हैं आज के दिन इनकी मेहनत को, इनकी ईमानदारी को और इनके जज्बे को।
0: बिल्कुल। शाइना, आपने बात भी की है किसी नर्स के साथ
1: जी,
0: जो आपने कोई रिकॉर्ड रखा है हमारे पास, तो हम चाहेंगे अपने सामईन तक ये पहुँचाना कि आपने जिनसे बात की है, ये शख्सियत से, पहले ये क्या कहती हैं, पहले ये सुनते हैं, उसके बाद आपको मिलवाएंगे आज के हमारे खास मेहमान से।
1: समीन, आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा उल्फत अमीन साहिबा, जो फैकल्टी मेंबर हैं सैयद मुंतकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा, पुलवामा में। ये नर्सिंग के शोबे में अपनी खदमात और तालीम के ज़रिए तुलबा को रहनुमाई फराहम कर रही हैं। नर्सिंग एक मुकद्दस पेशा है जो इंसानियत की खदमत का एहसास दिलाता है, और मोहतरमा उल्फत अमीन साहिब

0: इस जज्बे के साथ अपने फराइज अंजाम दे रही है। उनकी मेहनत और लगन न सिर्फ तुलबा के लिए मशल रहा है बल्कि माशरे में नर्सिंग के मैयार को बुलंद करने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। उल्फत अमीन साहिबा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम आज के इस लाइव शो में, बहुत बहुत खैर मकदम। सबसे पहले आपको नर्सों के आलमी दिन की बहुत मुबारकबाद। तो आपसे ये जानना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, ये दिन क्या अहमियत रखता है, किस मकसद से ये दिन मनाया जाता है?
1: इंटरनेशनल नर्सेस डे है, ये हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि ये नर्सेस की कुर्बानियों, उनकी खिदमत और इंसानियत के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। ये दिन दुनिया भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने जदीद नर्सिंग की बुनियाद रखी है। एक्चुअली इस दिन का मकसद होता है हमारी नर्सेज की अहमियत को उजागर करना, उनकी खिदमात को सराहना, उनकी खिदमात को रिकग्निशन देना हेल्थ केयर सिस्टम में। इस दिन में हम देखते हैं कि उनको अवार्ड से नवाजते हैं, उनकी रिकग्निशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा आवाम है उनमें एक शऊर बेदार हो। खासतौर पर COVID-19 के बाद हमने देखा है मैम, हमने महसूस किया हुआ है कि नर्सेज जो है ये हमारे जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए कितनी बेहद जरूरी है। तो इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं ताकि लोगों को पता चले, हम लोगों को अवेयर कर सकें, हम प्रोफेशन को अवेयर कर सकें कि नर्सेज की क्या अहमियत है इस दिन के हवाले से।
0: उल्फत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने खुद नर्सिंग के शोबे को बतौर करियर क्यों मुंतखब किया?
1: मैम, अगर हम देखेंगे, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, शायद मैं 8th 7th में पढ़ती थी, तो मेरी जो माँ थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनको शीहाना सिंड्रोम था। तो उनकी बीमारी में क्या हमें करना पड़ता था, हर 6 महीने के बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमें उनको 3-4 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था। तो बचपन से ही मैं, क्योंकि मैं उनकी सिंगल फीमेल चाइल्ड हूँ, एल्डर चाइल्ड हूँ, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता था, पापा के साथ एकम्पनी करना पड़ता था। तो वहां जब हम देखते थे नर्सिस को मरीजों की खिदमत करते हुए देखती थी मैं, तो उस मुश्किल लम्हे में जो नर्सिस का प्यार, उनका केयर, उनका इंसानियत भरा वो रवैया मेरी माँ के टूवर्ड्स, वो मेरे दिल को बहुत छूता था। तो मेरी माँ भी हमेशा से यही चाहती थी कि मैं भी हेल्थ केयर फील्ड में जाकर लोगों की खिदमत करूं। शायद उनकी दुआ, उनका ख्वाब या मेरे पापा की तरबियत ऐसी थी कि जिसने मुझे नर्सिंग की तरफ रागिब किया। मेरे लिए नर्सिंग सिर्फ एक मैम प्रोफेशन नहीं है बल्कि ये मेरे लिए इंसानियत की खिदमत का एक पाक जरिया है।
0: हाँ,
1: मुझे बच्चों की सेहत, क्योंकि मैंने बच्चों के शोबे में मास्टर्स डिग्री की हुई है, उनकी सेहत, पेशेंट्स का केयर, लोगों की मदद करना हमेशा से एक ना सुकून देता था, सुकून महसूस होता था मुझे। वक्त के साथ फिर मैंने क्लिनिकल हॉस्पिटल में मैंने यही 6 साल काम किया। उसके बाद मैं टीचिंग में चली गई क्योंकि वहां पे मेरा ये एजुकेशन का काम है, बीइंग ए रिसर्चर हूँ मैं वहां पे या एज ए गाइड। तो वहां पे मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जो हमारी नई नस्ल की नर्सेज है उनका खाली हम ये ना सिखाए कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आए, बल्कि हम उनको सिखाए कि आप उनके साथ डील कैसे करेंगे, एक ह्यूमन के साथ कैसे रखेंगे। क्योंकि मैम आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में हर एक चीज को AI आजकल रिप्लेस कर रहा है टाइमली। एक चीज जिसको कभी AI रिप्लेस नहीं कर सकता है मैम, वो है ह्यूमन टच। तो हम वही ह्यूमन टच अपनी नर्सिस को, फ्यूचर नर्सिस को सिखाते हैं, उनको कंपैशन सिखाते हैं ताकि वो अच्छे प्रोफेशनल्स बन सके। तो इसीलिए आज मैं बीइंग ए ट्यूटर, बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए एजुकेटर, नर्सिंग में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ।
0: बहुत अच्छी बात, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो ये चस बह तशा जानून उल्फत जी, इस तुहद यह शोब माशरस मज तूत इज्जत, तूत पहचान मिले अत शोबस यमिक तु सारी हकदार छो?
1: मैम अगर इस वो इज्जत क्या गो, इज्जत गो मान सम्मान डिग्निटी ना। अगर इस वो अगर अख नर्स पन्स पेशेंटस प्यार सान डील करन, तमिस पोलाइटली कथ करन, सच तमिस ध्यान दिवान, तमिस टाइमस पे दवा दिवान, तमि सुन ख्याल थवान, यह जहनस मज थवान यह हिंद, यह मुसलमान, यह क्रिहन, यह सफेद, रेस्पेक्ट टू ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर तमिस पेशेंटस केयर

0: çıkaran, Mi'nin saçı demiz izzet divan, tev saçı mi ezduk hakdar. Men agerçi aj logu me nasiz ki kirdar ki havale se, ev yerniz pehle se buhat behtar hai.
1: बिल्कुल
0: क्योंकि पहले जमाने में शायद नर्सिंग एज ए प्रोफेशन नहीं था, लेकिन अब अगर देखेंगे लोगों में बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है. लेकिन अभी भी बहुत हद तक नर्सेस को वो रिकग्निशन, वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती है मैम, जिसकी वाकई ये हकदार है. अगर आप भी देखेंगे नर्सेस दिन रात मरीजों के साथ होती है, उनको इमोशनल सपोर्ट देती है, क्रिटिकल सिचुएशन शासन तुमन मंश तिमन बकार इवान. तो कई बार एक नर्स सिर्फ दवा नहीं देती है, बल्कि एक पेशेंट के लिए वो एक उम्मीद होती है. जब एक मरीज अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर होता है, तो वो डॉक्टर से ज्यादा बात नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता. अगर सब घर से इमोशनली अटैच थे वीजा रोजा सुशासन नर्स.
1: नर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही वन होता है. तो अब लास्ट पे आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी नर्सेज के लिए, क्या पैगाम है आपका उन सब नर्सेज के लिए?
0: जी मैम, सबसे पहले मैं दुनिया भर की तमाम नर्सेज, खासकर अपने कश्मीर की मेहनती और डेडिकेटेड नर्सेज को इंटरनेशनल नर्सेज डे की दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ. मेरा पैगाम मैम यही होगा कि आप अपने प्रोफेशन पर फख्र करें, क्योंकि नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है. हर वो नर्स जो दिन रात मरीजों के दर्द को कम करने की कोशिश करती है, वो असल में इंसानियत की खिदमत कर रही होती है. कभी कभी एक नर्स की मुस्कुराहट, एक तसली भरी बात और एक छोटा सा केयर गेस्चर भी मरीज के लिए दवा से कम नहीं होता.
1: सही.
0: मैं आवाम से भी यही कहना चाहूंगी कि नर्सेज को सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ के तौर पर ना देखे, बल्कि उन लोगों के तौर पर देखे जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं. अल्लाह हर नर्स को सेहत, हिम्मत, इज्जत अता करे, क्योंकि वाकई हमारी नर्सेज इस हेल्थ केयर सिस्टम का दिल होती है. शुक्रिया.
1: बहुत बहुत शुक्रिया उल्फत जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त आकाशवाणी को दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.

0: दोस्तों अपने ट्रैक सुना, उम्मीद करते हैं ट्रैक आपने पसंद फरमाया होगा। जी हाँ, माचिस फिल्म से लिया हुआ ट्रैक था, गुलजार के लिखे हुए बोल। आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह में। आज हमारे मेहमान हमारे बीच आ पहुंचे हैं। जी हाँ, ये एक मेडिकल प्रोफेशनल है, वास्ता इनका भी मरीजों से है, दर्द से है, दुखों से है, दवाइयों से है। नाम है राशिद एहसन। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के दिन हमारे इस लाइव शो में।
1: थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, खुसूसन आज के नर्सिंग डे पे उनको मेरा दिल से सलाम।
2: और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक आज का दिन।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: तो आज हम बात ही कर रहे हैं इस हवाले से, इस दिन के हवाले से, जो असल में हीरोज हैं।
1: बिल्कुल,
2: उन्हीं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपसे मुखातिब होकर भी हम बात ही कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से। जी तबरेज,
0: बिल्कुल। और राशिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या अहमियत रखता है और कैसे देखते हैं आज के दिन को आप?
1: बेसिकली ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सिंग मनाया जाता है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिसके याद में ये मनाया जाता है। उस फाउंडर ऑफ दिस डे। बेसिकली नर्सिस का एक कौम के लिए इतना जबरदस्त ये ताबुन है जो हमारे माँ बाप को भूल जाते हैं। जब एक मरीज बेड पे पेन से मरता होता है तो वहां पे एक ही बंदा खड़ा रहता है, वो नर्स भाई। तो हेल्थ केयर में इन्होंने इतना काम किया, आपने कोविड में देखा, जब अपने प्यारों ने, अपने अजीजों ने अपने अजीजों को छोड़ के चले गए, तो वहां पे जो अगर आपको खड़ा कोई मिला, वो आपकी नर्स मिली, उसने आपको केयर किया, उसने जहां टच करने से इंसान डरता था, लेकिन उन्होंने उस टाइम आपका साथ दिया, उठाया बिठाया, दवाई तक पिलाई। मुझे याद है कुछ लोग अपनी मिसेज को जब डिलीवरी के लिए जाना था, कोविड पॉजिटिव आया, उनको छोड़ के भाग गए, तो वहां पे एक ही बंदा आपको खड़ा मिला, वो हमारी नर्स है। उनको हमारे दिल से सलाम है, क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई प्रोफेशन है वो नर्सेस है, जो आपको माँ के बदले वो प्यार देती, उस पेन में आपके साथ खड़े रहते हैं
0: जिसमें
1: और कोई नहीं रहता।
0: बिल्कुल सही
2: कहा आपने। जैसे आपने कोरोना की बात की, उस मुश्किल वक्त हमने भी देखा है, याद भी है, ये परसों की बात है, तो नर्सेस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन पर रहकर अपना काम अंजाम दिया, और वो जो काम है सो वारे थकन लायक काम। आज तिवान तम दो याद कर तम नर्सो कर काम। मगर तेन आ मैं तुंद कि अख चीज ये शोबस मे वान फीमेल नर्स बस
1: यू आर 100% राइट। नर्सेज मेल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा मैं एलाबरेट करूँ।
2: यही जानना चाहिए आपसे कि
1: कभी आपने एक मेल को, कोई पार्ट को आपने उसको प्रिपेयर करना, उसके लिए मेल नर्स चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल शाना बशाना, मेल हो फीमेल हो, ये नर्स इसका नाम दिया गया है, लेकिन ये मेल भी हो सकता है और फीमेल। मोस्टली ये प्रोफेशन फीमेल इस पे ना डिपेंड करता है, बट इसमें मेल भी बहुत सारे हैं।
2: अच्छा, यहाँ पे ये कहना चाहूँगी मैं कि ये जो करियर आपने मुंतखब किया, क्या सोच कर किया? क्योंकि

जान दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा और साथ ही साथ हमारे मेहमान जो यहाँ पे आज के शो की जीनत बनकर बैठे हैं उनको भी पसंद आया होगा। तो आपको बता दें, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं इंटरैक्टिव शो। तो आपको ये भी बता दें कि आप मीडियम के अलावा आप इस शो को समाप्त कर रहे हैं

0: FM 103.5 MHz पर। तो तब्रेज़ जी, आपने पहले ही ट्रैक से पहले जो सवाल किया मेहमान से, ये वो ये था कि अक्सर हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से, यानी नर्सिंग जॉब, हम वही बात कर रहे हैं। तो बदले में जो आप लोग हैं, जो ये डिपार्टमेंट है नर्सिंग का, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे या पेशेंट से? खासकर पेशेंट से तो कुछ लेना देना नहीं होता है, वो बेचारा पड़ा हुआ होता है बेड पर उनकी फैमिलीज के साथ। क्या एक्सपेक्ट होता है आपका?
1: नर्सेज आर द बेसिक पिलर, बल्कि बोन मैरो, ये जो सॉरी नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम।
0: बिल्कुल।
1: नर्सेज को क्या है कि उनके लिए कुछ आपका देना नहीं है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करिए आप, उनकी सेक्रीफाइस। यही नर्स घर में पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है, और घर में सब कुछ अपना, अगर कोई मैरिड है अपने हस्बैंड के लिए वो कपड़े प्रेस करती है, सारा कुछ करती है। उसके बाद ड्यूटी टाइम पे आना, फिर पेशेंट्स का ख्याल रखना, इन चीज़ को आपने सराहना है। नर्सेज को आपको ऐसे कुछ देना नहीं है, आपने ये ख्याल रखना है कि इसने अपने हर एक खुशी को सेक्रीफाइस करके आप तक आए हैं और आपका, आपके पेशेंट का ख्याल रखते हैं। छोटी सी भूल पे अटेंडेंस इतने वायलेंट होते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है कि हम पेशेंट को जितना ज़्यादा हो सके उनका ख्याल करें। कोई भी नर्स ये नहीं चाहेगी उसके पेशेंट को कोई, खुदा ना करे, कोई नुकसान पहुंचे।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: बट उसके बाद अगर छोटी सी बात पे आप उनको इग्नोर करेंगे, दो बातें बोलेंगे, वो हमें शोभा नहीं देता।
0: नहीं, हमें ये भी समझना है, ये वो काम है जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ये लोग बिजी होते हैं, इनको हर एक को टाइम देना होता है, इसमें थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए। अभी तब्रेज़ यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरे ख्याल से ये गलत मेरा कहना नहीं होगा कि जब भी हॉस्पिटल का नाम आता है हम डॉक्टरों को याद करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि नर्सेज के बगैर हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है,
2: अधूरा है। बिल्कुल सही। जहां डॉक्टर्स, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 50% कंट्रीब्यूट करता है, वहां बाकी 50% जो है वो हमारा ये नर्सिंग स्टाफ कंट्रीब्यूट करता है।
1: बिल्कुल। पैरामेडिक्स,
2: पैरामेडिक्स जी, ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनका काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है कि अगर इन्होंने कहीं पर आपकी खिदमत की है, चार दिन पाँच दिन खिदमत की है हॉस्पिटल में, आपके बीमार की पूरी देख रेख की है, उसके बाद अगर एक इंसान से गलती हो भी गई तो आप उसे नज़रअंदाज क्यों नहीं कर सकते?
1: बिल्कुल।
2: एक इंसान से गलती तो हो जाएगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम बशर हैं, बशर से गलती हो सकती है, लेकिन अगर गलती हुई है तो आप पहले वो पाँच दिन पर नज़र डालिए जहाँ पर इस नर्स ने पाँच दिन सुबह शाम आपके बीमार की खिदमत की है, उसके बाद अगर गलती हुई तो उसको बुलाने में ही बेहतरी होगी। राज साहब, आज का दिन आप कैसे मनाते हैं, क्या होता है आज के दिन?
1: हमारा तो हर एक दिन ऐसा ही होता है, बट आज हम याद कर रहे हैं जो फाउंडर है इस दिन की,
2: फ्लोरेंस नाइटिंगेल,
1: जिसने नर्सिंग के लिए बहुत काम किया, तो उसको याद करना ही हमारा फर्ज याद दिलाता।
0: क्या स्पेशल होता है आज के दिन?
1: आज के दिन कुछ स्पेशल नहीं होता, हमारा दिल हमेशा स्पेशल होता है।
0: कोई गिफ्ट वगैरह आप लोगों
1: को? मैं यही मैं कहना चाहता, इसी पे आना चाहता था कि अगर आपको नर्सिंग स्टाफ को, अगर आपने नर्सिंग कम्युनिटी को कुछ देना है, अवार्ड सर्मनी करें, उनको अप्रिशिएट करिए कि आपने इन कोविड में ऐसे बहुत सारे हालात गए हैं जिनमें आपने हमारी मदद की, हमारे पेशेंटों की मदद की, जहाँ हमारे प्यारे नहीं थे वहाँ पे आप खड़े रहे, तो ये सर्मनी से उनका, हमारा दिल जो है ना, दिल में खुशी एक पैदा होगी कि हमारा भी कोई ख्याल रखने वाला है, नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए।
2: और ये पता चलता है कि हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं
1: कहीं पे कि हमारा भी कोई ख्याल रखने वाला, अगर हमने कुछ किया है उसका भी हमें मेहनताना मिल रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए सो देट कि हमारा भी दिल बहलाई हो, कि अगर हमें कोई थोड़ी सी गलती भी हो जाए लेकिन हमारे भी लोग हैं जो हमारे लिए ये अवार्ड सर्मी का।
2: बहुत खूब, बहुत ही खूब। और यहाँ ये जरूर कहना चाहेंगे सामईन से कि सामईन, कहीं पर भी आपको आज अगर नर्स कहीं मिलते हैं तो जाकर उन्हें कुछ नहीं दे, कम से कम एक स्माइल उनको दे, एक प्यारी सी मुस्कान उनकी तरफ करें, उससे उनको लगेगा कि वो कहीं पर इंपॉर्टेंट है, और जाकर शुक्रिया उनका अदा करें, उनको बस ये कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं।
0: बस यही एक वर्ड जो है वो, मतलब मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, तो मौजा हम लेते हैं काम करने का, लेकिन जो ये एक थैंक यू है वो बहुत ही तसल्ली बख्श होता है।
2: बिल्कुल सही। और वो कहते हैं मदर टेरेसा अपनी किताब में लिखती हैं कि यू नेवर नो व्हाट अ लिटिल स्माइल कैन डू। एक मुस्कान जब आप किसी की तरफ देते हैं, शायद आप उसका दिन बना सकते हैं। इसलिए नर्स आज जहां पर भी आपको मिले, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल, कोई प्रैक्टिशनर मिले, उसे सलाम कीजिएगा और उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि जब भी बीमारी में हम आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ हमारी इसी नर्स को जाती है।
0: बिल्कुल।

0: आवाज दो हमको। आपने ये नगमा सुना और उम्मीद करते हैं नगमा आपने पसंद फरमाया होगा।
1: जी हाँ, आपको बता दें आप समाप्त कर रहे हैं लाइव इंटरेक्ट शो, तो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कश्मीर में नर्सिंग का जो शोबा है, मजीद इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए और कहाँ आप देखते हैं कश्मीर में इस शोबे को?
2: देखिए, नर्सिंग का अपना काम तो रूज पे है, उसमें कोई ये दोहराया नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है नर्सों के, जहाँ पे जो नर्स है एक एक दस दस वार्डों को एक एक नर्स देखना पड़ता उसको पड़ता है, जिसकी वजह से बीमारों तक पहुँचने में टाइम लगता है, उनको ओवरलोड पड़ा है। उन पोस्टों को, वैकेंट पोस्टों को फिल करना चाहिए था सो दैट कि हम हेल्थ सिस्टम को और बेहतर बना सके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा

0: नर्सेज का तो हमेशा काम होता है बीमार बीमारों की मदद करना, उनका जो जो भी चीज़ काम पे टाइम पे करना, उनका ड्रिप लगाना हो, चाहे दवाई देना हो, चाहे ब्लड सैंपल देना हो इन्वेस्टिगेशन के, जो कुछ भी। बट गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले कि जो भी वैकेंट पोस्ट है उनको फिल करें, सो दैट ये जो हमारी गवर्नमेंट सिस्टम में अभी जो खामियां है वो दूर हो,
1: दूर हो जाए। बिल्कुल सही। देखिए जहां पर हम देखते हैं, एक तरफ गारमेंट सेक्टर में नर्सेज हैं जो हाईली पेड नर्सेज हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी नर्सेज हैं और बराबर का काम कर रही हैं
0: 100%।
1: हालांकि सैलरी प्राइवेट में उतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट में है,
0: लेकिन
1: प्रेशर जो प्राइवेट में है
0: वो गवर्नमेंट में उतना
1: ज्यादा प्रेशर देखा जाए तो गवर्नमेंट में होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं है, वहां प्रेशर शायद थोड़ा कम है। अगर ये वैकेंट पोस्ट जो फिल हो जाते हैं, हमारी जो बच्चियां पढ़ के आती हैं, या आजकल मेल भी हैं हमारे पास जो नर्सिंग शोबे में आते हैं, अगर वो पढ़ लिख कर आए और उन्हें आगे मालूम हो कि हमारे पास पूरा पूरा रास्ता है, हमें जगह मिलेगी, हमें शोबे में कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब किया जाएगा, तो शायद वो और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात आपको ये बताऊँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी बहुत सारी नर्सेज है जो एडजस्ट हो रही है। बेशक उनकी सैलरी कम है, अब अभी तो आपको पता है बेरोजगारी उरूज पे है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे नर्सें काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छी सैलरी मिलती है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन आपको पता है आज कितनी महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वहाँ पे भी बहुत सारी नर्सें काम कर रहे हैं और 100% डिलीवर कर रहे हैं।
1: हमारा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी
0: काफी डेवलप हो गया है
1: और माशाल्लाह बहुत अच्छा
2: काम कर रहा है,
1: सर्व कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि आगे और भी बेहतर सर्व करेगा। सामईन मोहतरम, आज वर्ल्ड प्लांट हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है, ये भी एक मसला है जहां पर हम पेड़ों की देखरेख करने से चूकते हैं या पेड़ों को हम कहीं नजरअंदाज करते हैं। हम शजरकारी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाकर हम भूल जाते हैं कि जब प्लांट लगाया था क्या वो बना हुआ है या वो खत्म हो गया, हम कभी उस पर बात नहीं करते। अगर हम उस चीज पर थोड़ा सा तवज्जो दें, ये जो प्लांट्स हम लगाते हैं, प्लांट लगाने के बाद उन प्लांट्स को अगर हम पानी वक्त पे दें, उनकी देखरेख करें, तो शायद हमारे यहाँ भी प्लांट्स की हेल्थ जो है वो बनी रहेगी। आइए इस वक्त फोन लाइन पर हम जोड़ चुके हैं हमारी एक और मेहमान से। जी हाँ, ये DFO हैं सोशल फॉरेस्ट्री की और तैनात है अभी अनंतनाग और कुलगाम में, नाम है गजाला अब्दुल्ला। गजाला अब्दुल्ला साहिबा से बात करते हैं, उनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम।
1: गजाला जी, आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक।
3: जी मुझे क्यों, आप सबको मुबारक हो मेरी
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से आप?
3: जी देखिए, आज पता ही है सबको, आज 12th मई है और आज हम प्लांट्स का जो इंटरनेशनल डे फॉर द हेल्थ ऑफ प्लांट्स मना रहे हैं
1: जी।
3: और ये हर साल एक थीम के साथ आता है और इस साल का जो थीम है दैट्स प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, तो विच हाईलाइट्स द प्रोटेक्टिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर प्लांट्स हैं तो हम हैं, बिकॉज जो प्लांट्स है 80% जो फूड होता है वो हम प्लांट्स से लेते हैं और 98% रादर 100% ऑक्सीजन जो है वो हम प्लांट्स से लेते हैं
1: जी।
3: तो ये मैं ऐसा बोलूंगी कि ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, वाई ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारे लोग जो हैं जो मुझे सुन रहे हैं और जो भी लोग हैं उनको प्लांट्स की देख रेख करनी चाहिए और उनका जो हेल्थ है, बिकॉज हेल्थी प्लांट्स आर फाउंडेशन ऑफ लाइफ, तो प्लांट्स जो हैं उनके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और हर एक को प्लांट लगाना चाहिए क्योंकि यही हमारी जिंदगी है।
1: गजाला अब्दुल्ला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुख्तसर सी बात के लिए, लेकिन बहुत कारामद बात आपने कही कि यही सब कुछ है और इसकी देखरेख करना हम सबका फर्ज बनता है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: चलिए शुक्रिया जी, शुक्रिया।
1: तो ये थी गजाला अब्दुल्ला, जिनसे हमने जाना कि प्लांट हेल्थ कैसे हम देखते हैं और आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हमें करना चाहिए।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव और FM 103.5 MHz। और आज हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, नर्सेस डे के हवाले से। जी तब्रेज, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने प्लांट का आज बोला, तो मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि एक पौधा लगाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ, और ये भी कहूँगी ग्रीन सोचो, क्लीन रखो और ज़िंदगी को हसीन बनाओ। क्योंकि ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, मैम ने भी यही कहा कि अगर हम पौधे लगाएंगे तो बहुत बेहतर है हमारी ज़िंदगी के लिए।
1: बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वापस हम अपने मेहमान की ओर बढ़ते हैं। राशि साहब, आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे सुनने वालों के लिए?
2: सुनने वालों के लिए मेरी लास्ट मैसेज यही है कि यार, ये जो नर्सेस है, दे आर साइलेंट हीरोज ऑफ द सोसाइटी, उनकी कदर करें। वो आपके पेशेंट्स की कदर तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया है, इनके लिए पोस्ट वैकेंट जो पड़े हैं उनको फिल करिए। और अगर आज आपको कहीं पे कोई नर्स मिलती है, उनके साथ एक स्माइल शेयर करिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको हमारी तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक, और आपने वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच सर, अस्सलाम
1: वालेकुम। सलाम। तो सामिन, ये थे राशिद एहसान साहब, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक प्रोफेशनल, जिनसे आज हमने बात की, और उम्मीद करते हैं कि आज की ये गुफ्तगू आपने पसंद फरमाई होगी। आज के इस लाइव इंटरेक्शन में बस इतना ही। अब आप जुड़ेंगे शाहिन ऋषि के साथ, जो आगे का ट्रांसमिशन आपके लिए पेश करेंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दें आज के लिए, आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़ नासर।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 168.268 मीटर और FM 103.3। नमस्कार,
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N. रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 30 विधायकों द्वारा P. वेलुमणि को विधायक दल का नेता और C. विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने E. पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधान

सामिन, फिल्म नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो है वर्ल्ड ट्रैफिक सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और आज इसका लास्ट डे है। ये वीक 6 मई से 12 मई तक मनाया जाता है। इस वीक में ये पैगाम दिया जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स और रूल्स की पाबंदी करें, गाड़ी चलाते वक्त जो है मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, स्पीड लिमिट का ख़ास ख्याल रखें, पैदल चलने वाले और दूसरे ड्राइवर हजरात का एहतराम करें। तो दोस्तों, आज के दिन पर हम यही कहेंगे कि सड़क पर अपनी नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है।

0: 对呀，我是我们班长。
1: 班长。班
0: 长。
1: वो यहीं पर
0: यहीं
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

जहाँ सामिन आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नख में आकाशवाणी श्रीनगर से। तो वीक की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रैफिक सेफ्टी वीक की बात हो रहे हैं, जिसका आज लास्ट डे है। और आपको फिर से बता दें, ये 6 से 12 मई तक मनाया जाता है। ये वीक जो हम मना रहे हैं, इस वीक के चलते हम सब अहद करें कि ट्रैफिक रूल्स पे अमल करेंगे और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे, क्योंकि समीन ज़िंदगी बहुत ही कीमती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है

0: कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বর।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े

0: पहने।
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
3: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
3: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए।

0: Ellie.
1: आ गया डॉक्टर साहब का। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
3: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
1: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
3: जी।
1: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
3: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
1: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
3: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
3: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर। ठंडक में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
4: इन्हें हमारा सलाम।
5: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
7: नमस्कार
5: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।

साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और वहाँ

0: पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार,

0: निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
1: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, 1:50 होने वाले हैं। आइए अब कुछ ही देर में आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप उर्दू और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं कलीम अहमद।

जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मंसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। डॉक्टर सरमा के साथ चार अरकान असम्बली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी उजरा और एनडीए की सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर सरमा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए इस रियासत में लगातार तीसरी बार इक्तदार में आया है। उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असेंबली में 102 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद AGP और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF को 10-10 सीटें हासिल हुई थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज़ नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वजीर आजम रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि ये फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निज़ाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो CBI को सौंपने का फैसला किया है, ताकि पेपर लीक के इल्ज़ाम की भरपूर तरीके से जाँच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो CBI को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। NTA ने कहा कि ये इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज़ में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी।

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाति मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में सीबीआई ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान सीबीआई की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहां पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नौमुंतखब वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी के ज़ेर सदारत पहली काबीना मीटिंग के फ़ैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी, जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफ़्ज़ान सेहत को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को ओडिशा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे, जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि बीजेपी को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर बीजेपी को मजीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। ये अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और रज़ाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों मददगार और नर्स मिडवाइव्स और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट के एक सर्टिफिकेट, 1,00,000 रुपये नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के जरिए फराहम की गई बेशबहा खिदमात के तहत कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के वज़राए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैनुल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। ये दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इकतसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नज़दीक वाक़ शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि इस कॉरपोरेशन के तहत शराब की 4,675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मनसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

103.5 मेगाहर्ट्स पर आए सामीन चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं।

एक मीटर और FM 103.5 MHz पर सामीन, आइए कुछ नगमे आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी, आजकल का मौसम जो है पोलन का मौसम है, जिससे एलर्जी होती है। तो बाहर के मौसम में फूलों और दरख्तों से निकलने वाले पोलन कई लोगों के लिए एलर्जी का सबब बन सकता है। अगर आपको छींके, आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा।

आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 3 बज चुके हैं, आप तक पहुंचाएंगे फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों, सुपहर के 3 बज चुके हैं और अब वक्त है एक खूबसूरत सफ़र का, जहां बातें होंगी दिल की, यादें होंगी खूबसूरत और हसीन गीतों के साथ आज का ये सफ़र होगा। जी हाँ, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीना ऋषि। यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ये है फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम, लेकिन सिर्फ फौजी भाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए जो किसी अपने को याद करता है, दूर रहकर भी जो दिल के करीब हो, शायद वही रिश्ता सबसे हसीन होता है।

जी हाँ फजुबा, यो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का आपने नगमा समाप्त किया कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के थे। तो फौजी भाइयों, कभी हम सोचते हैं कि वक्त मिलने पर बात करेंगे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर कोई अपना याद आ रहा है तो उन्हें आज ही कॉल करें या एक मैसेज ही भेज दीजिए। कहते हैं कुछ रिश्तों को लफ्जों की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है।

आप तक नगमा पहुंचा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब आइए आप तक वो गाना पहुंचाते हैं, ये गाना सुनने वालों के दिलों में एक ख़ास जगह रखता है। मोहब्बत की पहली नज़र, दिल की धड़कन और एक हसीन लम्हे की याद दिलाने वाला ये गाना 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का जौहर है। जी हाँ, कुमार सानू की मीठी आवाज़ और जावेद अख्तर के बोल, आइए समाप्त करते हैं।

जी हाँ खुश फौज भाइयों, आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए। फौज भाइयों, फिल्मी मौसीकी का सफ़र जारी है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाला का नगमा जो आपने सुना, यकीनन आपके दिल में भी कुछ हलचल सी हुई होगी। मोहब्बत दरअसल एक ऐसा एहसास है जो ज़िंदगी को रंगीन बनाता है। ये सिर्फ देखने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम भी है। जब दिल किसी के लिए धड़कता है तो इंसान अपनी ख्वाहिशों, आराम और कभी कभी अपने वजूद को भी इसके सामने पेश करने को तैयार हो जाता है। अगला खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए है।

आपने ये दुगाना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में समाप्त किया। फिल्म दिल तो पागल है, जी हाँ, इस फिल्म का आपने नगमा समाप्त किया। फौजी भाइयों, रिश्तों में जज्बा कुर्बानी को आसान बनाता है, एहसास को गहरा कर देता है और मोहब्बत को पायदार बनाता है। जब दिल में जज्बा हो तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लगने लगती हैं, दूरियां भी करीब लगने लगती हैं और वादे न सिर्फ अल्फाज बल्कि रूह का हिस्सा बन जाते हैं। जज्बा ही तो है जो माँ की मोहब्बत, बाप की कुर्बानी, शौहर की जिम्मेदारी और बीवी की वफादारी को खूबसूरत बनाता है। ये वो जादू है जो आम रिश्तों को खास बनाता है।

आप समाप्त कर रहे हैं मुन्ना भाई MBBS का नगमा श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाज़ों में। जी हाँ, 2003 में आई ये फिल्म का नगमा आप समाप्त कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम ख़त्म हुआ जाता है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 3:50 होने वाले हैं। अब आप हमारे यहाँ से खबरें सुनेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सेफर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं तजमुल अंदराबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त अभियान के बाकी मांदा 69 दिनों के लिए कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फैमिली फोर्ट्रेस इकदाम का किया ऐलान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी का मगरबी एशिया में बहरान के चलते ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने पर दिया जोर। एनटीए ने 3 मई को लिए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का किया फैसला। और नर्सों का बैन अल-अक़वामी दिन आज। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात से पाक करने के लिए 11 अप्रैल को शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इन दिनों सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वबा को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आज 2 इकदाम का ऐलान किया, जिनमें मनुष्यात की कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फैमिली फोर्ट्रेस पहल शामिल हैं। हमारे बारामूला के नुमाइंदे कौसर सलाम ने खबर दी है कि बारामूला में आज मनुष्यात के खिलाफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले LG ने मनुष्यात पर काबू पाने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तो अजदा पहाड़ी प्रोग्राम केन कैमे तुसदा मेज़बान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया को आखदा। उम्मीद है तुसी ठीक ठाक हो सो ते हमेशा नालो आज भी प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुन दे हो सो। सामीन अज 12 मई है ते इस दिन वैसाख का त्यौहार मनाया जुलदा है। ये बुद्ध मत का सब तो मुकदस दिन है जिड़ा गौतम बुद्ध की जिंदगी दे त्रै अहम तरीन मरहलिया की याद बिच मनाया जुलदा है। पैदाइश, रोशन ख्याली और वफात यानी दुनिया तो रुखसती। इसी तरह वैसाख या बिसाख का महीना ये त्यौहार आम तौर ते हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चंद पूरा होंदया मनाया जुलदा है। इस दिन मंदरां विच खसूसी दवाइयां और मुराकबा किया गेंदा है। गरीबां को खैरात, खाना पीना और कपड़े दिते गेंदे। सामीन प्रोग्राम को अगे बदेंदे होया आओ बशीर परदेसी दी आवाज़ भी सुनदे हां ए गीत।

जी सामीन, तारक परदेसी ते मसरत नाज दी खूबसूरत आवाज़ां बिच गीत सुनिया, उम्मीद है पसंद आया उसी। ते सामीन, 12 मई दी एक खसूसियत ए भी है

दिन पूरी दुनिया विच नर्सां दा आलमी दिन मनाया जुलदा है, जिसका मकसद सेहत दे शोबे विच नर्सां दी अंथक खिदमत, कुर्बानियां और इंसानियत वास्ते उनदे किलीदी किरदार को सिफ देना है। ए दिन जदीद नर्सिंग दी बुनियाद रखने वाली शख्सियत फ्लोरेंस नाइटिंगेल दे योमे पैदाइश ते मनाया जुलदा है। इंटरनेशनल कौंसल ऑफ नर्सेस ICN सुन 1965 ईस्वी थी हर साल 12 मई को ए त्याड़ा मनाने दा बाकायदा आगाज कीता। इस दिन दा मकसद नर्सां को खराज तहसीन पेश करना और सेहत दी देखभाल बिच उनकी अहमियत को उजागर करना है, खास तौर ते वबाई बीमारियां या जंगी हालात बिच उनकी मेहनत और हमदर्दी काबले तारीफ है। तसामीन आओ प्रोग्राम दे आखर ते मोहम्मद सदीक एहतशाम पूरी दी आवाज़ बिच सुनदे हां ए गीत।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा किनका में हाँ लियाकत अब्बास। पहले पेश हैं कुछ खास खबरें दियाँ सुर्खियाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन नशा मुक्त अभियान के तहत बाकी बचे दे 69 ध्याड़े वास्ते कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ते फैमिली फोर्ट्रेस इकदाम का किया ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन मगरबी एशिया के बहरान को देखदियाँ ईंधन ते मुल्क की बाहर दी चीज़ों को इस्तेमाल को घट करने का दिता जोर। NTA सुन 3 मई को किए गए नीट UG 2026 इम्तिहानों को रद्द करने का किया फैसला। और अज मनाया जुड़ रहा है नर्सों का बैन कौमी ध्याड़ा। हूँ खबर तफसील नाल सुनो। जम्मू कश्मीर को मनशियाती पाक करने वास्ते 11 अप्रैल को शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इन्हें ध्याड़ियाँ सरगर्मियाँ जोरों नाल चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन इस वबा को समाज की मुकाई वास्ते अज 2 इकदाम का ऐलान किया। इन मनशियात के कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फैमिली फोर्ट्रेस पहल शामिल हैं। अस्ते बारामूला के नुमाइंदे कौसर सलाम से खबर दी है जो बारामूला अज मनशियात के खिलाफ पद यात्रा को झंडी दस का विद्या करने थी।

0: खताब कर रहे से। उन्होंने सुना आखिर जे अगरचे मुझे सारे मुल्क ईंधन की किल्लत को देखद्या ईंधन की कीमतों भी वाधा कर दिता है, तहम भारत घरेलू सतह तक इन कीमतों को बरकरार रखने कामयाब होया है।
1: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुन क्वेश्चन पेपर दे इल्जाम दे सिलसिले बीच इस महीने की 3 तारीख को कराए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहानों को रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुन दसे जे एक कदम गदरे ते गदरिया की बहबूद को देखते हुए किए गया है। NTA से मजीद आखिर सरकार सुन पेपर लीक के इल्जाम का यह मामला CBI को देने का फैसला किया है। NTA के मुताबिक ये इम्तिहान दोबारा किए गए सन जिनकी तारीख कन्नी थी की गई सी। नवी इम्तिहाना वास्ते तालबे इल्मा को नवी रजिस्ट्रेशन करने की कोई लोड़ नहीं और ना ही उन्होंने कोई और फीस देनी पैसी। आज नर्सा का बैन अवी दिहाड़ा मनाया जुटा है। इस दिहाड़े को मनाए का मकसद सेहत के शोबे में नर्सा के कलीदी किरदार को उजागर करके इन दिदमतों का एतराफ़ करना है। इस दिहाड़े के सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली में नर्सिंग शोबे नाल ताल्लुक रखने वाले 15 पेशावरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए। ये अवार्ड उन्होंने को नर्सिंग के शोबे में इन दे पेशावराना किरदार वास्ते दिए गए। इस बीच अवार्ड बीच 1 लाख रुपये और एक सनद भी शामिल है। सदर जमहूरिया सुन सेहत के शोबे में नर्सा के अहम किरदार की तारीफ की। इस दौरान शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोहरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई सुन भी नर्सा को मुबारकबाद देने आखिर जो सेहत के शोबे में इन दिदमत को कदे भी भुलाया नहीं जुल सकता। नर्सा के बैन अवी दिहाड़े के तालुक नाल GMC श्रीनगर बच्च ऑप्थोमोलॉजी शोबे की सीनियर ग्रेड नर्स तायरा अख्तर सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करदियां आख्या,
2: जब हमारे पास आते हैं पेशेंट हम कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखते, हम ट्रीट इक्वल करते हैं। हम तो पहले उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं, उनको केयर करने में उनको हम कोई कमी नहीं रखते हैं सर। हमारे दिल में बहुत सुकून होता है जब हम पेशेंट को केयर करते हैं, जब हमारा पेशेंट ठीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलते हैं उस टाइम। और सर हमारी कुछ नर्सेस ये पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट खुद भी होते हैं तो भी वो पेशेंट का ट्रीट करते अच्छे से, वो ये नहीं करते हैं कि हम खुद पेशेंट हैं, वो उनको फील ही नहीं करने देते हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं।
0: आकाशवाणी को बने दे 90 साल पूरे हुए दे सिलसिले बीच आकाशवाणी से नगर दे ऑडिटोरियम बीच आज 3 बजे थी एक मौसीकी दा प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। इस प्रोग्राम बीच मुझ सारे मशहूर फनकार अपने फन दा मुजाहरा कर रहे हैं।

मुड़ एक बार तुहाडा मनपसंद पंजाबी प्रोग्राम लैके मैं तुहाडी दोस्त ते होस्ट मनमीत कौर हाजिर हाँ। सारे सुनन वालियां नूं सत श्री अकाल आदा साथियों, अज दी प्रोग्राम शुरुआत हो गई है ते अज जिहड़ा प्रोग्राम है एक खास मुद्दे ते असी गलबात करांगे जिहड़ा कि पूरे विश्व भर दे विच हफ्तावारी प्रोग्राम हर थां थां ते मनाए जांदे हन। ते सब तो पहले आओ नज़र करदे हां अपने सुनन वालियां लई ए प्यारा जिहा गीत।

0: रवि का मसाला प्रकट तो राजकुमारी का मुद्रा ज्यादा देखे तो मसालों पकड़ाते वाले हाथों ना हाथ लाई लिए तो कदे टूटा हुआ दंत काट के जरी मुश्क जाए तो और राजकुमारी की थकी टूटी हुई चिंजड़ी ना इन गलों की के होश थी कि उसने कोई किसरा देखे शायद नजरों से हाथों का तीर उसने टेढ़ का तो सुख वास्ते कबूल लिया हुआ था पर पेड़ो टेढ़ और रोज बद्दा सबूत समेत फिर भी आध नंगो था आध नंगो ही के बल्कि टोकरी लाता चाहता साफ नंगो हो जाए तो खैर नू भी यो पेट प्रेम ते मोहब्बतों की निशानी काट ते बगार की कार दुखिया औरत हमदर्द ना कदे कदे दिल की गर्दासी छुड़े तो मैं ना मेरे में क्यों ना हुए काम के आखिरी तेरे राजकुमारी ने मेरे लिए आथरों कटिया हमारा पति बहुत जलूम है बाबू साहब शाम को रोज रोज शराब पी होते है रात को उसका बात ना मानो तो मार पीट कर होते है न सर चढ़त है न साले को फिर दसू ये कर मेरा सीना पर किसरा बिजती बल्कि मेरा सीना पर मिस्त्री का लोहा थोड़ा नरम लगी पर मेरे को इसको के लाई तू मीना कालत जान गई तावल थी तो उसने मसाला बनाने की जल्दी क्रीम ककड़ू को कुकुर चाशका ना भी बांग दे तो कुकड़ू कुकड़ू तो मीना लगे तो यो कुकुर बांग नहीं दे तो बल्कि राजकुमारी तर देख के जोश को यो शेर कह लगा वो उफ ये नादारी मेरे सीने से उठता है धुआं आ ऐ अफलास के मारे हुए हिंदुस्तान मन्या वो एक नोट उस दुखिया दर सट के हूँ इस टूर गयी जिस समय आतम ताई की कपड़ पलट मार छुड़ी हुई पर एक नेकी ओंकार आयो थो जिससे सारी तैयारी कॉलेज में खुश रही हो कारी न के आयो थो आज राजकुमारी ने रोटी दे छुड़ी ये मुझे उस दिन वह साफ फाके थी रात की जंग की मार थे भुखी सो रही थे निकीलो कुछ उम्मीदवारी की नजदीकी थे कुछ काम की तावर दिनारी भी नहीं कर सकी संजाना मैंने टबरी ने दस्यो के रोटी से सुनी पकी नहीं थी और उस बेचारे को अपनों कोई पांडव ही नहीं थो मैं सोचना के ओहो मेरी थाली में दे छोड़नी थी जनानी ने जरी आग काट के मैंने पूछियो क्यूँ इस क्यूँ को मेरे को कोई जवाब नहीं थो
1: अगर हमारे कुल बैठे

0: जे तेरी नीत जानी होती,
1: जे तेरी नीत
0: जानी होती फिर पहले ही मुंह पै कर तो, जे तेरे लारे रज तो जेकर ता हसी अज छह कर तो, बच्चू नी थो के कर तो तेरे नालों जे कर तो। ते हुण गज़ल कर दे, नीथी जाती उधारी देनी,
2: नीथी जाती उधारी देनी,
0: गमगी नाले खारी देनी, जद जीनो मरनो तेरे हाथ है, कातल ना के होशियारी देनी, जब जीनो मरनो तेरे हाथ है, कातल ना के होशियारी देनी, अड्डे हाथ खाता पीता,
2: अड्डे हाथ खाता पीता,
0: दौलत जगी सारी देनी, भुखो है पैड़ो तमो जगो,
2: भुखो है पैड़ो तमो जगो,
0: रज गई इसना नारी देनी, ते मुख तो अर्ज है वसीम बदनाम मैं ये तेरी,
2: वसीम बदनाम मैं ये तेरी,
0: किसने चाणी वारी देनी,
2: कर, कर, कर,
0: वसीम बदनाम मैयत तेरी, किसने चाणी वारी देनी, नीथी जाती उधारी देनी, गम गिनाले खारी देनी।

0: चांदनी रात आई है, आज फिर तेरी याद आई है, दर्दां की बारात आई है। ते इसते बाद हुन दावते सुखन दियो जनाब मोहम्मद यासीन ना साबुरा ना
1: पारो पारो दिसे ना कोई यार सहारो दिसे, प्यार का आज शहर में आ गए। शेर अर्ज के प्यार का आज शहर में आ गए, हर रंजो मजनू आवारो दिसे।
2: वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: शेर अर्ज के कच्चो कड़ोत नदी डूंगी,
2: कच्चो
1: कड़ो नदी डूंगी, ना कोई पार किनारो दिसे। शेर अर्ज के चूठ का महल चुबारा बनिया, झूठ का महल दीवारा बनिया, सच को उत्ते टारो दिसे। झूठ का महल चुबारा बनिया, सच को उत्ते टारो दिसे। शेर अर्ज के ना कोई ना कर दिल अनमन्नी पोला,
2: ना कर दिल
1: अनमन्नी पोला, नाज नसा उदारो दिसे। जग अज पारो पारो दिसे, ना कोई यार सहारो दिसे। शुक्रिया।
0: ये था जनाब मोहम्मद यासीन ना साहब। ते ना साहब होने के बाद आखिर पर उन दफ्ते सुखन दियो जनाब तारक फहीम साहब होना ना। जनाब तारक फहीम साहब,
3: गजल का कुछ शेर अर्ज है। या बरिया भी डीके तिना सजन बांख लिया रे रे, या बरिया भी डीके तिना सजन बांख लिया रे रे, रुत फुलांगी कतक बाजी हारे रे। सिंगर लामन माली छमर तेरी इखी डीक रिया है, सिंगर लामन माली छमर तेरी इखी डीक रिया है, तेरो आनी रांझो बनियो बेले माल न चारे रे। सिंगर लामन माली छमर तेरी इखी डीक रिया है, तेरो आनी रांझो बनियो बेले माल न चारे रे। सारा जग मा मेरी जंज को चर्चो मुचे,
4: सारा जग मा मेरी जंज को चर्चो मुचे,
3: सारा जग मा मेरी जंज को चर्चो मुचे, ना डिठो में सुरमो मेहंदी ना हूँ बैठो खारे रे। शेर के तेरो महल है पावे उच्चो चैन प्यार दे खाली,
4: तेरो महल
3: पावे उच्चो चैन प्यार दे खाली, चुगिए डेरा इर्स प्यार का जे तुम्हारे आवे रे। तेरो महल पावे उच्चो चैन प्यार दे खाली, चुगिए डेरा इर्स प्यार का जे तुम्हारे आवे रे। आखरी शेर है कि ना खाबे ना आटो छलिए, ना खाबे ना ऑटो चलिए, ना निको दुर्घटनी चढ़ियो, ना खाबे ना ऑटो चलिए, ना निको दुर्घटनी चढ़ियो, फहीम तेरी अडीक में बैठो पावे काग उड़ारे रे। ना खाबे ना ऑटो चलिए, ना निको दुर्घटनी चढ़ियो, फहीम तेरी अडीक मत बैठो पावे काग उड़ारे रे। या बरिया भी डीके तिना सजन बांख लियारे रे, रुत फुलांगी कद तक बाजी हारे रे।
0: ये था जनाब तारक फहीम साहब और गोजरी जबान का गालब जनाब असर साहब और उनकी तरफी पर जो मुशायरा हो रही हो तो जिन शोरा हजरात ने इस मुशायरा में सो लियो, इनका इस्माई ग्रामी एक दफा फिर ले लियो। जनाब मोहम्मद यासीन नाज साहब, जनाब मोहम्मद रफी शबनम साहब, जनाब सरवर हुसैन ख्याली साहब, जनाब बशारत एजाज साहब, जनाब शहबाज वसीम साहब, जनाब शौकत नसीम साहब, जनाब तारक फहीम साहब, खाकसार मोहम्मद जूनस नसीम।
5: अगर हमारा कोई मुलाकात है मोहम्मद सिद्दीक खान की आवाज़ में।

0: पुलिस ने गोसु हजरतबल श्रीनगर में मकसूद हुसैन खान नामी ड्रग स्मगलर का 1,20,00,000 रुपया मालियत का रिहायशी मकान अटैच कर दी। तो पुलिस ने अवंतीपुरा में मुनशियात मुखालिफ के बेदारी प्रोग्राम को इनकाद किया। पुलिस ने हंदवाड़ा में शौकत अहमद खटाना नामी ड्रग स्मगलर की 5 कनाल सरकारी जिमी पिरो कब्जो चढ़ा लियो। पुलिस ने हिंदवाड़ा में गैर कानूनी तौर काश की जा रही खशकाश न तबाह कर दी। तो पुलिस ने बारामूला का मुख्तलिफ इलाका में पांग न तबाह कियो। यखमन पूरा पटन बारामूला में पुलिस ने शौकत अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर की गैर कानूनी जायदाद ने खत्म कर दी। तो चक जमाल मीर पलहलर में पुलिस ने गैर कानूनी तौर काश की जा रही खशकाश ने तबाह कर दी। तो वहाँ पुलिस ने बिजबहड़ा इलाका में भी इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान एक वसी जिमी पर काश्त की जा रही खशकाश ने तबाह कर दी। तो कुलगाम में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत सरकारी जिमी पर तामीर किया गया जहूर अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलर की 2 दुकानों ने खत्म कर दी। तो वहाँ जम्मू सूबा का मुख्तलिफ जिला में भी नशा मुक्त अभियान के तहत मनशियात फरोशा और इसका बुनियादी ढांचा नाम इस्मारकरण की कोशिश जारी है। डोडा पुलिस ने जिला का मुख्तलिफ इलाका में मनशियात मकाली बेदारी प्रोग्राम को इनकाद कियो। सांबा पुलिस ने एक ड्रग स्मगलर ना कुछ नशावर चीज़ों समेत गिरफ्तार कियो। किश्तवाड़ पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना जारी रखता हुआ गैर कानूनी तौर काश की जा रही खशकाश ना तबाह कर दी। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में बहरान का चलता ईंधन की बचत और गैर मुल्की मसनूआत का इस्तेमाल न काट करने पर जोर देते हुए गुजरात का वडोदरा में एक तकरीब तो खिताब करता हुआ वज़ीर आज़म ने कहा कि इस चैलेंज नाल निपटन वास्ते इज्तमाही कोशिशों का नाल नाल सारा मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियां न पूरा करना होगा।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस का वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन में इजाफो करके इस 36,000 टन योमे तो बढ़ा के 54,000 टन कर दी। तो है वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में सालाना बिजनेस समिट 2026 ना खिताब करता हुआ क्यों थो कि उनने क्यों कि अगर कई मुल्का ने ईंधन की किल्लत के चलता ईंधन की कीमतों में आतो अलावा इजाफो कर दी तो तहम भारत घरेलू सतह पर इन कीमतों ने बराबर रखने में कामयाब हो है।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: गोजरी में ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ते डीटीएच पर भी सुन सके। वजीर तालीम सकीना एतू ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर का नौजवाना ना मेरिट और शफाफियत के बुनियाद पर मसावी मौका फराम करने की वादा बांधा। वे आज SCERT बिमना में 14 लेबार्ट्री असिस्टेंट्स में प्रमोशन आर्डर तकसीम करने के बाद खिताब कर रही थी। तकरीब पर वजीर आला का मशीर नासर असलम वानी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर लीक होने का इल्जाम का चलता इस महीना की 3 तारीख न लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी है कि यह कदम तुलबा की बहबूद ना नजर में रखता हुआ लिया हुआ है। NTA ने मजीद जानकारी दी कि सरकार ने पेपर लीक का इल्जाम को यह मामलों CBI न देने का फैसला किया हुआ। NTA के मुताबिक ये इम्तिहान दोबारा लिया जाएगा जिनकी तारीख अलग तो कड़ी जाएगी। वहाँ नुआ इम्तिहान वास्ते तालब इल्मा ना नई रजिस्ट्रेशन करन की जरूरत नहीं है ना ही उन नकाय और फीस अदा करनी पड़ेगी। आज नर्सों को बैनुल अक्वामी तैड़ो मनाया जा रहा है। इस तैड़ा ना मनाने को मकसद तभी निगहदाश्त का शोभा में नर्सों का कलीदी रोल ना उजागर करके इनकी खिदमात को एतराफ करना है। इस तैड़ा का सिलसिला में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नर्सिंग शोभा तो ताल्लुक रखन आला 15 पेशावराना ना नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड अता किया। ये अवार्ड उन नर्सिंग का शोभा में इनका रोल वस्ता अता किया गया। इस अवार्ड में 1,00,000 रुपया

0: تو اس کے نال یو خبرنامو موک کیو مارو اگلو خبرنامو شام 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر واگو دیوں اجازت اللہ حافظ
1: آکاشوانی سری نگر اب آکاشوانی دلی سے
2: نمسکار آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم بھارت 14 اور 15 مئی کو برکس ودیش منتریوں کی بیٹھک کی میزبانی کرے گا بیٹھک کی ادھیکشتا ودیش منتری سبرامنیم جے شنکر کریں گے ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جائسوال نے نئی دلی میں بتایا کہ برکس کے سدسیہ سہیوگی دیشوں کے ودیش منتری اور پرتندھی منڈلوں کے پرمکھ بیٹھک میں شامل ہوں گے وہ پردھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کریں گے بیٹھک کے دوران برکس سدسیہ دیشوں کے ودیش منتری آپسی ہت کے ویشوک اور کھیتری مدوں پر وچار ومرش کریں گے प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं नॉर्डिक समिट होने वाला है नॉर्वे की यात्रा है स्वीडन की यात्रा है इटली की यात्रा है नेदरलैंड्स की यात्रा है यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा
2: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल

0: प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस आकाशवाणी श्रीनगर मीटिंग वे वाला एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय विश्वकर्मा प्रोग्राम गामी बाइन खतरा

وما يجحد بآياتنا إلا كل حتى

وينزل الغيث

0: जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हान जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम रांची ट्राफी में शानदार कामयाबी हिंद सिलसिलस में डाक तार महकम तरफ जारी कर खसूसी कवर तो पोस्टल लिफाफ रस्म रोनवी अंजाम दिशा रांची ट्राफी क्रिकेट टीम हिंद मेम्बरन सत बात करान करो तिजन सलाहित हिंद तारीफ अत मौक जम्मू कश्मीर सर्कल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सागर हनुमान सिंह तो बी बी सी आई के सब कमेटी मेम्बर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता तौजूद जम्मू कश्मीर तलीम हज वजी सकीना उतमन वोन मौजूद सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवान मेरट तो शोजरे किस बुनियादस पे हवी मौक फराम कर वादवान तम आज एस सी आर टी बेमन श्रीनगर चौदहान लबार्ट्री स्टंटन तरक्की हिंद आर्डर तकसीम कर पत खताब करान तकरी पे वजी अला सन्द मशीर नासिर असलम वानी तो बाकी कहिया आला अफसर तौजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्वेश्चन पेपर लीक सपदन कन यम रत त्रेमि तारीख हेन आमुत नीट यूजी जो शतवुह इम्तिहान मनसूख कर फैसल नमुत अकिस सोशल मीडिया पोस्टस पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जानकारी दिशा यह कदम तलब इलम बहबूदी नजर तल तुलना आमुत एन टी एन मजीद जानकारी दिशा सरकार पेपर लीक यह मामल सी बी आई एस पुशरूमुत एन टी ए मुताबिक यी इम्तिहान दुबार हेन युद तारीख अलग पे मुकर कर बापत तलब इलम नव रजिस्ट्री छ तो न कह हुरीमान फीस अदा कर आज नर्सन हुंद आलमी दोह मनान यह दोह मनान मकसद तबी वशिदाश किस शोबस मज नर्सन हुंद कलीदी रोल वतलवित तिजन खजमतन हुंद एतराफ कर अत सिलसिलस मज कर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नव दिल्ली मज राष्ट्रपति भवन मज अत शोबस सत तल्लु थवन वाले पंदहान पेशवर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल एवार्ड अत यह एवार्ड नर्सिंग शोबस मज तिज रिच कारकर्दगी पे दिन अत एवार्डस मज लक्ष रोप नकद तो अख सनद शामिल सदर जमहूरियान कर अत दोस पे नर्सन हंद तारीफ नर्सन हंदिस बैनुल अक़वामी दोह किस सिलसिलस मज वोन जी एम सी श्रीनगर ऑप्टोमोलॉजी शोबच सीनियर ग्रेड नर्स ताहिरा अख्तरन आकाशवाणी न्यूज सत कान
1: जब हमारे पास आते हैं पेशेंट हम कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखते हम ट्रीट इक्वल करते हैं हम तो पहले उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं उनको फिजिकली फिट रखते हैं उनको केयर करने में उनको हम कोई कमी नहीं रखते हैं सर हमारे दिल में बहुत सुकून होता है जब हम पेशेंट को केयर करते हैं जब हमारा पेशेंट ठीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उस टाइम और सर हमारी कुछ नर्सेस ये पेशेंट हो गए कैंसर पेशेंट खुद भी होते हैं तो भी वो पेशेंट का ट्रीट करते हैं अच्छे से वो ये नहीं करते हैं कि हम खुद पेशेंट है वो उनको फील ही नहीं करने देते हैं वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं
0: यपर वो सिकिम सूरक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनायन नर्सन मुबारक करान जबी खजमत फराहमी मज तिंद रोल थर कंडी हसियत हावान तमो ऐलान कर्म सिकिम मज यी सास जहत तीम तबी अमल तैनात कर सरन सोचन इन मज पांच हथ असाम नर्सिंग स्टाफ बापत मखसूस आजन तमो वो हस्पताल किस प्रथ शोबस पोचर दिन बापत प्रथ मुमकिन कदम तुलने
2: आज के दिन पे इसका जो थीम है कि नर्सेस हमारा फ्यूचर है और इनको कैसे एम्पावर किया जाए तो इसके बारे में जो आज सेलिब्रेशन हुई इसमें हम अपनी नर्सेस को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन का और खासकर सिकिम्स का एम्बलम ऊंचे रखा है अपनी डेडिकेशन से अपनी सेल्फलेस सर्विस से और जैसे इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा नाम है उसमें इनका काफी रोल है जो लोगों को इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा है इस प्रोफेशन पे भरोसा है इसमें इनकी मेहनत का नतीजा है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और वादा करता हूँ कि इनके जो मसाइल है उनको हम एम्पावर करेंगे इनको हम मदद करेंगे ताकि ये अपना रोल आगे से बहुत अच्छी तरह निभा पाए
0: वही खबर रेल सर्विस मुतालिक जम रेलवे डिवीजन रेलवे हिंद मुख्तलिफ शोबन मज बेहतरी अन बापत सुबुक दोश सपदमित कहिया मुलाजिम दुबारा तैनात कर फैसल कर्मुत जम्मू रेलवे डिवीजन सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उजीत सिंगलन अमि कदम तारीफ करान वो मुख्तलिफ शोबन मज इन कुल शीत मुलाजिम दुबारा तैनात कर अम सत मिले सवार बेहतर सहूलियत जम्मू कश्मीर खुराक सिविल सप्लाईज तो अमूरी सार्फिन महकमे कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ अकबाकतन कोर आज अनंत नाग दौर तो हूँ तथि जारी तरक्ति सरगर्मियन तो इन वाजन श्री अमरनाथ जी यात्रा हिजन तैयारियन जायज तमो दी अफसर हिदायत से तम गात्रा रुत पे मुनद कर बापत पेशगी इंतजाम कर आकाशवाणी हिंद वजूदस मज आमतिक नमत वरी मुकमल सपदन के सिलसिलस मज सपूद

एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायनीं अम्बत्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषणीं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरिओं तत्सत्।

0: है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
1: पर क्या कर सकते हैं?
0: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
2: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir.
3: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
4: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
3: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
4: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
3: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
4: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
3: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
4: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
3: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
4: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
3: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
6: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 MHz के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सबिन वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो ईंधन बचाएं और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करें ताकि मगरबी एशियाई बहरान के दौरान मुल्क के जर मुबादला पर दबाव कम हो। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने वडोदरा गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए गैर मुल्की मसनूआत दरामद करने पर खर्च करता है और मौजूदा बहरान ने सप्लाई चेन को शदीद मुतासिर किया है। वजीर अजम ने आवाम से अपील की कि वो कोविड दौर के तरीके दोबारा अपनाएं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स और ईंधन के कम इस्तेमाल के इकदाम। उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते, हर छोटा कदम मुल्क के मफाद में अहम है। वजीर अजम ने आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसेस और कार पुलिंग अपनाने की अपील की ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को फिलहाल सोना खरीदने से भी गुरेज करना चाहिए ताकि जर मुबादला पर दबाव कम हो। वजीर अजम ने यकीन दिलाया कि हुकूमत बहरान के असरात को कम से कम रखने के लिए काम कर रही है और अवामी ताउन से मुल्क इस मुश्किल वक्त को बेहतर तौर पर गुजार सकेगा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि खित्ता ईंधन और गैस के बहरान की तरफ बढ़ रहा है, जो मईशत को गैर यकीनी सूरतहाल और मुश्किलात में धकेल सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया कि खित्ता ईंधन और गैस के बहरान की तरफ बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि आलमी कशीदगी और जारी जग्राफियाई तनाजात सूरतहाल को मजीद खराब कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बंद करने के मामले पर कहा कि इससे शराब नोशी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो लोग पीते हैं वो बाहर से भी शराब ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत शराब की फरोख से हासिल होने वाले रेवेन्यू की तलाफी करे तो इंतजामिया उन्हें फौरन बंद कर देगी।
7: तो शराब पीते हैं, पियेंगे, खाने मिलेगी तो बाहर से ले आएंगे, उसको क्या करेंगे? और जो शोर उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि शराब पीने वाला कौन है? हमने शराब की दुकानें नहीं खोली, जिनने खोली उस वक्त उन्होंने शोर किया, मैं इनसे पूछता हूँ, बताइए हर गांव में खोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, लोग चीनी खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनका लाने वाला कहीं और है। अगर ये क्राइसिस बंद नहीं हुआ, ईरान और अमरीका का लड़ाई बंद नहीं हुई, तो अल्लाह जाने हमारी हालत क्या। और फरमाइए,
6: साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर जीएम शाही ने जम्मू कश्मीर में शराब की बढ़ती हुई दस्तियाबी पर तशवीश जाहिर की है और हुकूमत से फौरी तौर पर इसकी फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। मीडिया से खिताब करते हुए जीएम शाही ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी सकाफती विरासत, रूहानी अकदार और पुरअमन समाजी माहौल के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मार्केटों और अवामी मकामात पर शराब की खुली फरोख्त माशरे के लिए संगीन तशवीश का बाइस है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि شراب صرف سیاحتی مقامات پر موجود ہوٹلوں تک ہی محدود

0: यूजी 2026 इम्तिहान को कागज लीक और बेजाब्तगियों के इल्जामात के बाद मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दोबारा इम्तिहान मुनक्कद किया जाएगा। मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान हुकूमत ने नीट यूजी 2026 इम्तिहान जो 3 मई को मुनक्कद हुआ था मनसूख करने का ऐलान किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि यह फैसला हुकूमत की मंजूरी से लिया गया है और दोबारा इम्तिहान की तारीख बाद में जारी की जाएगी। एनटी ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने मामला सीबीआई के हवाले करने का फैसला लिया है ताकि इल्जामात की जामे तहकीकात की जा सके। एनटी की तरफ से बताया गया है कि इस फैसले से मुतासर 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्कद होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होगी और कोई इजाफी फीस भी नहीं ली जाएगी। अब एक और मौजू सामिन, आज आलमी नर्सिंग डे के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इहतमाम किया गया। वादी कश्मीर में दिन की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब सिकम सोरा में मनक्कद हुई, जहां मुकर्ररीन ने नर्सों के रोल की सराहना की। तफसीलात अकरमुल हसन से।
1: आलमी नर्सिंग डे के हवाले से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑडिटोरियम में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर सिकमस प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई मेहमान खसूसी थे, जबकि डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर बशीर अहमद फोमडा, एडिशनल डायरेक्टर जहूर अहमद मीर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सिकिम्स प्रोफेसर फारूक अहमद जान, सिकिम्स कैंसर इंस्टीट्यूट और जनाना अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू, सिकिम्स नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अहमद मकबूल वानी, नर्सिंग के इंचार्ज ऑफिसर और प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन शफीका अख्तर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शमीमा खान भी ऐवान सदारत में मौजूद थी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शमीमा खान ने खुद इस्तकबालिया में तकरीब पर आए लोगों का खुश आमदेद किया। तकरीब की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन और सिकिम नर्सिंग शोबे की इंचार्ज शफीका अख्तर ने नर्सिंग डे मनाने का मुद्दा मकसद बयान किया। उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को खराज अकीदत पेश किया। सिकिम नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल वानी ने अपने खिताब में नर्सिंग कॉलेज में दरपेश चंद मसाइल भी पेश किए और तमाम नर्सिंग अमले को यह दिन मनाने पर मुबारकबाद दी है। सिकिम एससीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर सिर्फ एडवाइस देता है, लेकिन इसको अमलाने के लिए एक बेहतरीन नर्स का होना जरूरी है और इस शोबे के बगैर अस्पताल नामुकम्मल होता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर फारूक अहमद जान ने अपने खिताब में नर्सिस को किसी भी अस्पताल की बैकबोन करार देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिकिम्स का नर्सिंग अमला बाकी जगहों के नर्सिंग अमले से बहुत बेहतर है। डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर बशीर अहमद फोमडा ने भी खिताब किया। डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने खिताब में नर्सिंग अमले को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं जाती तौर इनके दीनी ने मसाइल को हल करने के लिए कोशा हूँ। सिकिम्स सरबरा ने नर्सिंग अमले के साथ साथ दीगर एहलकारों और अफसरान पर जोर दिया कि वो मरीजों के साथ बेहतर से बेहतर बर्ताव का मुजाहरा करे।
0: आपने अकरमुल हसन की रिपोर्ट सुनी। इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया गया। तकरीब में नर्सों की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर, डीन एकेडमिक अफेयर्स मौजूद रहे। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने हालिया जालाबारी से मुतासर किसानों और मालिकान बागात के लिए फौरी मुआवजे और रिलीफ के इकदाम का मुतालबा किया है। गुलाम नबी लोन हांजूरा ने एक बयान में कहा कि गुजशत दिनों शदीद जालाबारी ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बागात, खेतों और रहायशी मकान को नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर बेंडीपोरा, चैर शरीफ और वस्ती कश्मीर के दीगर इलाकों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सेब के बागात, धान की नर्सरियां और सब्जियों के खेत तबाह हुए हैं, जिससे हजारों खानदान शदीद माली मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जोर दिया कि हुकूमत फौरी तौर पर नुकसानात का सर्वे करके मुतासर खानदानों को मुआवजा दे और छोटे किसानों के साथ साथ कमजोर तबकों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज जारी किया जाए। इधर इत्तला के मुताबिक वानीगांव पट्टन में भी जालाबारी और शदीद बारिश की वजह से मियाबागात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब एक और मौजू सविन, अनंतनाग के मटन चौक इलाके में आज एक दारुल उलूम में आग नमूदार होने के नतीजे में एक तालिबे इल्म की मौत जबकि 3 दीगर के जख्मी होने की खबरें हैं। मुकम्मल रिपोर्ट इस तारीख से।
2: आज दौरान शब पेश आए एक अफसोसनाक आतशबाजी के वाकये में एक कम सिन तालिबे इल्म जान बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक कोट रोड मटन चौक अनंतनाग में वाकया मस्जिद व दारुल उलूम फैजान बाबा हैदर ऋषि में आज शब अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दारुल उलूम की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इतवार मिलते ही मुकम्मल फायर एंड एमरजेंसी सर्विस और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर जाए वाकों पर

0: गई और मुकामी लोग व दारुलूम के तलबा की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में चार तलबा झुलस गए जिनकी शिनाख्त बिलाल अहमद कुमार, वल्दी मोहम्मद अकबर साकिन वारवन, मोहम्मद साहिल मनाज, वल्दी अब्दुल करीम साकिन संगलदान, इरफान गुलजार वल्दी गुलजार अहमद दोई साकिन लड़ो पहलगाम और साबिर फयाज टकार वल्दी फयाज अहमद साकिन रियासी के तौर पर हुई। तमाम जख्मी तलबा को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर ने बिलाल अहमद कुमार को मुर्दा करार दिया, जबकि जख्मी तलबा आलिम मोहम्मद साहिब मिनाज की हालत तशीशनाक होने के बाद इसे मजीद इलाज व मुआवजे के लिए श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। दीगर दो जख्मी तलबा का इलाज GMC अनंतनाग में जारी है। इब्तदाई तहकीकत के मुताबिक आतजदगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तमाम वाक्य की असल वजूहत जानने के लिए मजीद तहकीकत जारी है। वाका के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग अमूद अशोक नागपुर ने जाय हादसा का मुआयना किया और बाद अदा अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की आयादत की। उन्होंने जेर इलाज तलबा के सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में जानकारी हासिल की और डॉक्टरों को हिदायत दी कि मुतासरीन को बेहतरीन तबी सहूलियात और मुमकिन निगहदाश्त फराहम की जाए। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। दरियासना कल रात गए हरनाग अनंतनाग में भी आतजदगी का एक और वाका पेश आया जिसके नतीजे में एक तजारत इमारत को लाखों रुपया मालियत का नुकसान पहुँचा।
1: आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजू समीन आकाशवाणी की नशरियात के 90 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक महफिल मौसीकी का एहतमाम रहा। इस तकरीब में मुख्तलिफ फनकारों ने मौसीकी पेश करके हाजरीन से दाद हासिल की। आकाशवाणी श्रीनगर के DDG इंजीनियरिंग गुरबिंदर सिंह ने खुतब इस्तकबालिया पेश किया जबकि प्रोग्राम सरबरा गुलाम सुलाखों ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। इस तकरीब की निजामत के फराइज हमारे साथी इशफाक अहमद लोन ने अंजाम दिए। इस तकरीब में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के अलावा AIR और दूरदर्शन श्रीनगर के अमले ने भी शमूलियत की और फनकारों की हौसला अफजाई की। इधर मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किचलू ने आज डूल और पड़ियाराना इलाके का दौरा किया जहां लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। सजाद अहमद किचलू ने लोगों को यकीन दिलाया कि उठाए गए मामलों को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। साबिक वजीर और PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासी ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में जम्मू कश्मीर के आवाम को रोजगार के मौके, जमीन के तहफ़्फ़ुज़ और शिनाख्त के हवाले से बेचैनी का सामना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बेरोजगारी और जमीन के हकूक के हवाले से खदशात हकीकी हैं और इनका पुरअमन हल तलाश करना जरूरी है। उन्होंने नशा मुक्त मुहिम को खुशाइंद करार दिया और कहा कि मनशात ने नौजवानों को बुरी तरह मुतासर किया है। इस मुहिम से उम्मीद पैदा हुई है कि नौजवान अपनी जिंदगी इज्जत के साथ बहाल कर सकेंगे। दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम सोनावारी का एक वक्त आज बांडीपुरा गया जहां उन्होंने मोहम्मद मुनवर परवाना के घर जाकर अहले खाना से ताजियत की। वाजह है कि मोहम्मद मुनवर परवाना के बरादर असगर अब्दुल मजीद वानी गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए थे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूदात मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
4: अरे ये सेवराम की दुकान बंद क्यों है?
5: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
6: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट।

0: से बनाओ।
1: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
2: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
1: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
2: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
4: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
3: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
4: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
3: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
4: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
3: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
4: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
3: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
4: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
3: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
6: ये छु आकाशवाणी श्रीनगर शाम च 7:30 खबरन हुंद बुलेटिन हेत चुस बु रियाज हाजनी। गोड़ खास खास खबरन पेठ अख नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सज वर्मुली मनशियातस खिलाफ पद यात्रा में शिरकत। नशा मुक्त अभियान तहत 235,000 बेदारी प्रोग्राम मुनद, 7 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद मगरबी ऐशोक बोरान नजर तल थवित ईंधन तो गैर मुल्की चीज कम इस्तेमाल करनस पे जोर। एन टी ए दस 3 मई हन आमुत नीट यूजी 2017 इम्तिहान मनसूख कर फैसल, तो नर्सन हुंद बैनुल अक्वामी दो आज। खबर तफसील सान। जम्मू कश्मीर मनशियात निश पाक करने बापत 1 अप्रैल पर शुरू करने आमित नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत यमन दोहन सरगर्मी जोरन पर चलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान छु यु वबा समाज निश दूर करने बापत आज दोन इकदाम हुंद ऐलान कोरमुत, यमन मज मनशियात कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो अयाल अम निश दूर थावने हिश कोशिश शामिल छ। सानि वर्मुलिक नुमाइंद कौसर सलामन छ खबर दिसमज आज वर्मुलि मनशियात खिलाफ पद यात्रा झंडि हवित रवाना करने ब्रो कर एल जी एन मनशियात पे कोबू प्रावन बापत समाज कन सारनी तबकन अथवास अपील। तमो वन अत मुहिम मंजिन मजहबी लीडर तो समाजी जमात तो शामिल कर तमों अत अभियान तहत वनुक तान 235,000 बेदारी प्रोग्राम मुनद कर आम दौरान चौतजहान सासन बेमार इलाज तक आमुत, ये जन 7 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार त कर आय।
7: आज मैं बारामूला की धरती से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज 69 दिन बचे हैं हमारे पास, हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मूक दर्शक बनने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पड़ोस में ऐसी कोई गतिविधि हो रही है कृपा करके प्रशासन को पुलिस को सूचना दीजिए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की सफलता किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि जन भागीदारी पर टिकी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आइए हम वह पीढ़ी बने जिसने इस चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से सामना किया और हम पीछे नहीं हटे। आइए हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं जहां हमारे युवाओं की ऊर्जा स्वयं को नष्ट करने में नहीं बल्कि दुनिया को रोशन करने में लगे।
6: जम्मू कश्मीर नश की बित निश पाक करने बापत इकस हतस दोहस पे मबनी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत सरगर्मी जोरन पे चलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद ये पैगाम।
7: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा,

0: पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक आम शहरी राजेंद्र सिंह बाली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: आज के जो नौजवान हैं ये ज्यादा ड्रग में मुतला हो गए हैं, खासकर लड़के लड़कियां इसमें ज्यादा मुलवस पाए जा रहे हैं। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मैं सराहना करता हूँ, चाहे वो पुलवामा हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, ऑल डिस्ट्रिक्ट हो, वो ड्रग के मुद्दे बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादातर पेरेंटों को इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें, ड्रग की तरफ न जाएं।
1: पुलिस ने गासू हजरतबल श्रीनगर में मकसूद हुसैन खान नामी ड्रग स्मगलर के 1,20,00,000 रुपये मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया। पुलिस

0: कर रहे हैं और ज्यादातर पेरेंटों को इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें, ड्रग की तरफ ना जाएं।
1: पुलिस ने गासू हजरतबल श्रीनगर में मकसूद हुसैन खान नामी ड्रग स्मगलर के 1,20,00,000 रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया। पुलिस ने अवंतीपोरा में मुनशियात मुखालिफ कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पुलिस ने हंदवाड़ा में शौकत अहमद खटाना नामी ड्रग स्मगलर की 5 कनाल सरकारी अराजी पर से कब्जा छुड़ाया। पुलिस ने हंदवाड़ा में गैरकानूनी तौर काश्त की जा रही खशकाश को तबाह कर दिया। पुलिस ने बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में खुद उगी भांग को तबाह किया। यखमनपोरा पट्टन बारामूला में पुलिस ने शौकत अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर की गैरकानूनी जायदाद को मुनहदिम कर दिया। चक जमाल मीर पलहालन में पुलिस ने गैरकानूनी तौर काश्त की जा रही खशकाश को तबाह कर दिया। उधर पुलिस ने बिजबहाड़ा इलाके में भी इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान एक वसी अराजी पर काश्त की जा रही खशकाश को तबाह कर दिया। कुलगाम में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत सरकारी अराजी पर तामीर किए गए जहूर अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलर की 2 दुकानों को मुनहदिम कर दिया। उधर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में भी नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डोडा पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सांबा पुलिस ने एक ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशात समेत गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए गैरकानूनी तौर काश्त की जा रही खशकाश को तबाह कर दिया, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में एक मेडिकल शॉप को सरबे मोहर कर दिया गया। सांबा पुलिस ने 10 कनाल अराजी पर फैले बांग की काश्त को तबाह कर दिया। जम्मू जिले के SSP ने एक मीटिंग के दौरान सलामती सूरत हाल के साथ साथ मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में वाइब्रेंट विलेज उरनभवा का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों के साथ बात की और जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। बाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदी देहात के लोग खासतौर से किसान, नौजवान और खवातीन कौम की खिदमत के लिए तमाम जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरहदी देहात तरक्याती मंजरनामे के साथ जुड़ रहे हैं और ये शमूलियाती तरक्की की एक मिसाल बन रहे हैं। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने 83 वाइब्रेंट विलेज के मुख्तलिफ सेक्टरों में 94 करोड़ रुपये लागत वाले मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने उरनभवा गांव के नौजवानों में HADP के तहत सेंक्शन लेटर तकसीम किए और कई एक SPOs को तकरारनामे सौंपे। इस मौके पर मेंबर असेंबली ओडी डॉक्टर सज्जाद शफी, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात, IGP कश्मीर VK बीरदी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में बहरान के चलते ईंधन की बचत और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया है। गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ सभी को मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना होंगी।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने घरेलू LPG प्रोडक्शन में इजाफा करके इसे 36,000 टन यौमे से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में सालाना बिजनेस समिट 2026 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे कई ममालिक ने ईंधन की किल्लत के चलते ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, तहम भारत घरेलू सतह पर इन कीमतों को एतदाल पर रखने में कामयाब हुआ है।
3: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर मसावी मौके फराहम करने की वादा बंद है। वो आज SCERT बेमिना में 14 लेबोरेटरी असिस्टेंट्स में प्रमोशन ऑर्डर तकसीम करने के बाद खिताब कर रहे थे। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमवानी के अलावा कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे। अब रेल से मुतालिक یہ خبر۔

0: रेलवेज की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस शुरू होने से अब तक लगभग 45,000 मुसाफिरों ने इसके जरिए सफर किया है, जिनमें सयाह, ताजर, मकामी लोग और श्रद्धालु शामिल हैं। अवामी हलकों ने इस रेल सर्विस की काफी सताइश की है। दरियासा जम्मू रेलवे डिवीजन ने रेलवे के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने के लिए सुबुकदोश हुए कई मुलाजमों को दोबारा तैनात करने का फैसला किया है। जम्मू रेलवे डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शोबों में कुल 80 मुलाजमीन को री एंगेज किया जाएगा और इस पहल से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर लीक इल्जाम के चलते रवां माह की 3 तारीख को मुनाकिद किए गए नीट यूजी 2026 इम्तहान को मनसूख करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी कि यह कदम तलबा के मफाद को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। एंटी ने मजीद कहा कि सरकार ने पेपर लीक इल्जाम का यह मामला CBI को सौंपने का फैसला किया है। एनटीए ने के मुताबिक इम्तिहान दोबारा लिए जाएंगे, जिनकी तारीख अलग से इजरा की जाएगी। नए इम्तिहान के लिए तलबा को नई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, न ही उन्हें कोई इजाफी फीस अदा करना पड़ेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज नर्सों का बैनल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के कलीदी रोल को उजागर करके उनके खिदमात का इतराफ करना है। इस दिन के सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नर्सिंग शोबे से ताल्लुक रखने वाले 15 पेशावरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड अता किए। ये अवार्ड उन्हें नर्सिंग के शोबे में उनके पेशेवराना रोल के लिए अता किए गए। सदर जमहूरिया ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के अहम किरदार को सराहा। नर्सों के बैनल अक्वामी दिन के तालुक से GMC श्रीनगर के शोबे ऑप्थल्मोलॉजी की सीनियर ग्रेड नर्स ताहिरा अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, हम कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखते, हम ट्रीट इक्वल करते हैं। हम तो पहले उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं, उनको केयर करने में उनको हम कोई कमी नहीं रखते हैं सर। हमारे दिल में बहुत सुकून होता है जब हम पेशेंट को केयर करते हैं। जब हमारा पेशेंट ठीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उस टाइम। और सर, हमारी कुछ नर्सेस ये पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट खुद भी होते हैं तो भी वो पेशेंटों का ट्रीट करते है अच्छे से। वो ये नहीं करते हैं कि हम खुद पेशेंट है, वो उनको फील ही नहीं करने देते हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं।
0: दरियासा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में भी नर्सों का बैनल अक्वामी दिन मनाया गया। इस मौके पर स्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने तिबी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नर्सेज हमदर्दी और जज्बे ईसार के तहत मरीजों की खिदमत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि स्किम्स में 1200 नीम तिबी अमले की तैनाती पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से 500 असामियां नर्सिंग स्टाफ के लिए मखसूस होंगी।
2: आज के दिन पे इसका जो थीम है कि नर्सेज हमारा फ्यूचर है और इनको कैसे एम्पावर किया जाए, तो इसके बारे में जो आज सेलिब्रेशन हुई, इसमें हम अपनी नर्सेज को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन का और खासकर स्किम्स का एम्बलम ऊंचे रखा है अपनी डेडिकेशन से, अपनी सेल्फलेस सर्विस से। और जैसे इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा नाम है, उसमें इनका काफी रोल है। जो लोगों को इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा है, इस प्रोफेशन पे भरोसा है, इसमें इनकी मेहनत का नतीजा है।
0: आकाशवाणी के क्याम के 90 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक महफिली मौसीकी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वादी के नामवर फनकारों ने अपने फन से मौजूद सामईन को महजूज किया। इन फनकारों में वहीद जिलानी, मंजूर अहमद शाह और शफी सोपोरी शामिल थे।

वादी की आवाज सुनने वाले सभी सामईन की खिदमत में हमारा खलूस भरा आदाब। सामईन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे भारत की तरक्की की, खलाई शोबे में पेशरफ्त की, दिफाई ढांचे में जबरदस्त बेहतरी की, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान की साइंसी तरक्की, खलाई शोबे में कामयाबियों, दिफाई ताकत में इजाफा और इन मैदानों से जुड़े उन कारनामों की जिन्होंने भारत को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ला खड़ा किया है। समीन, आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जो कौमें इल्म, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती हैं, वही दुनिया में इज्जत, ताकत और तरक्की हासिल करती है। हिंदुस्तान ने गुज़श्ता चंद दिहाइयों में साइंस, खलाई तहकीक, दिफा, मवासलात, मसनूई जहानत, एटमी तवन्नाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे मैदानों में काबिल जिक्र तरक्की की है। अगर हम हिंदुस्तान के खलाई शोबे की बात करें तो सबसे पहले जहन में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का नाम आता है। इसरो ने न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरद शिनाख्त कायम की है। महदूद वसाइल के बावजूद हिंदुस्तानी साइंसदानों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो काबिल फख्र है। हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम का आगाज एक छोटे से कदम से हुआ था, मगर आज यही कदम एक मजबूत सफर में तब्दील हो चुका है। इसरो ने कई ऐसे सैटेलाइट खला में भेजे हैं जिन्होंने मुल्क में मवासलात, मौसम की पेशनगोई, ज़राअत, तालीम और कुदरती आफात से निमटने में अहम किरदार अदा किया है। सन 2014 में हिंदुस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने अपने पहले ही मिशन में मरीख के मदार तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। इस मिशन को मंगलयान कहा गया। यह न सिर्फ कम खर्च वाला बल्कि इंतहाई कामयाब खलाई मिशन था। दुनिया के बड़े ममालिक भी पहले ही मिशन में ये कामयाबी हासिल न कर सके थे, मगर हिंदुस्तान ने यह कारनामा अंजाम देकर अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। इसके बाद चंद्रयान मिशनों ने हिंदुस्तान को चांद की तहकीक में नुमाया मुकाम दिलाया। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के आसार दरियाफ्त किए, जो एक तारीखी कामयाबी थी। फिर चंद्रयान 2 आया जिसने कई साइंस

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। सामने हम पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत, बढ़ते हुए इक्तसादी बहरान और आम शहरियों की जिंदगी पर उसके तबाहकुन असरात का जायजा लेंगे। गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान मुसलसल माशी अदम इस्तेकाम, सियासी बेयकीनी, माली खसारे, कर्जों के बोझ और महंगाई के तूफान में गिरा हुआ है। मुल्की इक्तसादी बुनियादें कमजोर होती जा रही हैं और अवाम की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे दायरे में फंस चुकी है जहां कर्ज लेकर कर्ज अदा किया जा रहा है। बिरूनी कर्जों का हुजूम खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। हुकूमत के पास जर मुबादला के जखायर कम होते जा रहे हैं जबकि दरामदात का दबाव मुसलसल बरकरार है। डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा पाकिस्तानी रुपए को शदीद कमजोर कर चुका है। आज सूरतहाल ये है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। महंगाई पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा अजाब बन चुकी है। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, बिजली, गैस और पेट्रोल, हर चीज की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। बाजारों में खरीदारी कम हो चुकी है, छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं, सन्नतों की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बिजली का बहरान भी मईशत के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है। बिजली की कीमतों में बार बार इजाफे ने सन्नतकारों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। कई फैक्ट्रियां जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। पैदावारी लागत बढ़ने से पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडी में मुकाबला करने की सलाहियत खोती जा रही है। नतीजा ये है कि बरामदात में मतलूबा इजाफा नहीं हो पा रहा है जबकि दरामदात का इनहिसार बरकरार है। तवन्नाई के शोबे में गर्दिशी कर्जा एक मुस्तकिल मसला बन चुका है। अरबों रुपए के बकाया जात ने पूरे निजाम को कमजोर कर दिया है। गैस की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग ने सनअती पैदावार पर बुरा असर डाला है। कई इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। आम शहरी भी तवील लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। पाकिस्तान का जरई शोबा भी बहरान का शिकार है। पानी की किल्लत, महंगी खाद, बिजली के नर्ख और मौसमी तब्दीलियों ने किसानों को मुश्किलात में डाल दिया है। जरई पैदावार मुतासिर होने से खुराक की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दीही इलाकों में गुर्बत बढ़ रही है, किसान कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान में टैक्स निजाम की कमजोरियां भी मईशत के लिए बड़ा मसला है। टैक्स देने वालों की

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामीन, तालीमी निजाम और मईशत के दरमियान भी वाजिया खला नजर आता है। यूनिवर्सिटियों से फरागुल तहसील होने वाले नौजवानों के लिए मार्केट में मुनासिब मौके मौजूद नहीं। फनी तरबियत की कमी, सनती तरक्की की सुस्त रफ्तारी ने बेरोजगारी के बहरान को मजीद बढ़ाया है। पाकिस्तान की बरामदात का दायरा भी महदूद है। टेक्सटाइल पर हद से ज्यादा इन्हिसार, आलमी मंडी में सख्त मुकाबला और पैदावारी मसाइल ने मुल्की तिजारत को मुतासर किया है। दूसरी तरफ दरामदी अशिया पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। तेल, मशीनरी और दीगर जरूरी अशिया की दरामदात जर मुबादला पर दबाव डालती है। जर मुबादला के जखायर में कमी ने पाकिस्तान को बार बार बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के पास जाने पर मजबूर किया है। आलमी मालियाती फंड और दीगर इदारों की सख्त शराइत ने अवाम पर मजीद बोझ डाला है। बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में इजाफा आम शहरियों की मुश्किलात बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में भी इजाफा देखा जा रहा है। कई खानदान दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। शहरी और देही दोनों इलाकों में माली मुश्किलात बढ़ रही हैं। बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। सेहत की सहूलियात महंगी होती जा रही है। मुतवस्ता तबका भी बुनियादी जरूरियात पूरी करने में मुश्किलात महसूस कर रहा है। महंगाई के असरात सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं रहे बल्कि समाजी ढांचे पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। जराइम में इजाफा, जहनी दबाव, घरेलू मसाइल और समाजी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आम आदमी की कुव्वत खरीद कमजोर हो चुकी है। तनख्वाहों में इजाफा महंगाई के मुकाबले में न होने के बराबर है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट और तामीराती शोबा भी सुस्त रवि का शिकार है। सीमेंट, सरिया और दीगर तामीराती सामान महंगा होने से तामीराती सरगर्मियां मुतासर हो रही है। इस शोबे से वाबस्ता लाखों मजदूरों के लिए रोजगार के मसाइल पैदा हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी नुमाया होते जा रहे हैं। सैलाब, खुश्कसाली और शदीद मौसमी हालात ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत को नुकसान पहुंचाया है। हालिया बरसों में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। लाखों अफराद बेघर हुए और ज़रई ज़मीनें तबाह हुई। सेहत का शोबा भी अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर सका। अमन अमान की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इक्तिसादी अदम इस्तेकाम ने इस शोबे को मुतासर किया है। डिजिटल मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। इंटरनेट की रफ्तार, पॉलिसियों में अदम तसलसल और सरमायाकारी की कमी ने टेक्नोलॉजी के शोबे को मतलूबा तरक्की नहीं दी। कई नौजवान फ्रीलांसर्स और आईटी माहिरीन भी गैर यकीनी हालात से परेशान है। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की इक्तिसादी साख मुतासिर हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट्स, कर्जों के खदशात और आलमी बेयकीनी ने बैरूनी दुनिया में तशवीश पैदा की है। बैन अल-अक़वामी सरमायाकार महतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम आज एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मुस्तकबिल गैर वाजिया दिखाई देता है। महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, कमजोर करेंसी, सियासी कशीदगी और माशी बदहाली ने जिंदगी को दुश्वार बना दिया है। आम आदमी मुसलसल दबाव में है और रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। समय पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बेशुमार चैलेंजेस, अंदरूनी कमजोरियों और मुसलसल दबाव का शिकार है। इक्तिसादी बहरान के असरात न सिर्फ माली निजाम बल्कि समाजी जिंदगी, रोजगार, तालीम, सेहत और कौमी इस्तेकाम तक फैल चुके हैं। आने वाले दिनों में यह बहरान किस सिमट जाता है, ये एक अहम सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। समय ये तो थी बात पाकिस्तान के हवाले से, और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स या म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं अपने ब्रांचेस के थ्रू, उस पे भी कमीशन मिलता है हमें। हम फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, उस पे भी कमीशन मिलता है। तो इस तरह से जो अलग अलग एवेन्यू से हम इनकम जनरेट करते हैं उसको कंसोलिडेट करके एक टोटल इनकम हमारे बैंक का क्रिएट होता है। और जो हमारा कॉस्ट्स है, जैसे एम्प्लॉई का सैलरी होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, जो हम रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, एम्प्लॉईज के सैलरी है, उनके टीएडीए है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, इन सब को जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिस पे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं। जो 2363 करोड़ का आपने प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस।
1: जैसे आपने अभी जिक्र किया, यू मेंशनड अबाउट ऑपरेशन सिंदूर था, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी क्लोज हो गया उस टाइम एरेटिक वेदर पैटर्न्स की वजह से। उसमें जो इम्पोर्टेंट था, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। तो सर क्या आपकी तरफ से उनके लिए ऐसा कुछ रिलीफ कहेंगे या उनके लिए कंपनसेशन कहेंगे, क्या बैंक का इस तरह का कोई प्रोविजन होता है ऐसे सेक्टर्स के लिए?
0: जब इस तरह का कोई भी कैलामिटी होता है तब स्टेट की तरफ से, यूटीएलबीसी की तरफ से स्टेट को रिक्वेस्ट किया जाता है, यानी कि यूटी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इसको एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करें। और उसके बाद हम आरबीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस पे हम रिहैबिलिटेट करेंगे अपने लोनीज को जिन्होंने लोन लिया है, और उसको रिहैबिलिटेशन करने की वजह से उसको एनपीए नहीं डिक्लेयर करेंगे। तो ये स्पेशल पैकेज आरबीआई से हमें टाइम टू टाइम मिलता रहा है, पिछले साल भी मिला है। जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है और बिजनेस में डिस्टरबेंसेस हुए हैं, उसमें करीब 14,600 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको हमने रिहैबिलिटेट किया है रिहैबिलिटेशन पैकेज के अंदर में, जिसमें करीब करीब 10,000 से 12,000 करोड़ का हमारा आउटले रहा है। फ्रेश लोनिंग भी हमने की है, और जिन लोगों ने भी उस दौरान अप्लाई किया है हर किसी को हमने वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है।
1: सर जेएनके बैंक जो है अर्निंग प्रॉफिट्स एंड डूइंग गुड, तो ये ग्रोथ और प्रोग्रेस जो है बैंकिंग में, जेएनके बैंक में, क्या ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉमन कस्टमर का है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से हम देखते हैं?
0: देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो 1938 से यही काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हम कुछ भी करते हैं, हमारा मेन कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी कर सके हम करते हैं। हमारा कमर्शियल एंगल जरूर रहता है, बैंक है, प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एम यही रहता है कि जिस तरह का भी स्कीम आए, आप किसी भी तरह का स्कीम ले लें, जैसे पिछले साल ये बहुत अच्छा एक स्कीम आया था मिशन युवा, उस स्कीम के अंदर भी हम सोल बैंकर हैं जो हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम टोटली कमिटेड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
1: किस तरह से आप और इसमें करना चाहेंगे या करना चाहते हैं?
0: देखिए, जो नीडी होते हैं उनको जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसको एक मोटे तौर पर कंट्री में उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है तो 40 से ऊपर बैंक्स, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो हर साल गवर्नमेंट का टारगेट रहता है उसका करीब करीब 80% हम अकेले ही करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक। हालांकि 40 और बैंक्स हैं यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक उस कंप्लीट टारगेट का 80% खुद ही करती है। तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो, रिक्वायरमेंट जो लोगों के होता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम पे लेंडिंग प्रोवाइड करता है जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम साल में करीब करीब 60,000-65,000 कैंप्स करते हैं जहां फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनकी कमजोर है, बिल्कुल रिमोट एरियाज में जा करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। और हम एक और काम जम्मू एंड कश्मीर बैंक करती है, वो अनबैंक्ड जो एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, वो उन हर जगह पे या तो ब्रेक एंड मोटर ब्रांच, मतलब प्योर जिसको ब्रांच कहते हैं, या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो खिदमत सेंटर्स कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो एसेंशियली हमारा काम यही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में कि यहाँ के लोग जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रति लॉयल हैं। वैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम

0: के लिए लॉयल है।
1: एक और इससे जुड़ा सवाल है कि जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज रही हैं पिछले 35 साल या किसी भी टर्मोइल की वजह से बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी कभी एफसीआई की तरफ से भी हमें इनपुट मिलता है या क्या केसीसीआई की तरफ से भी? वो उनका कहना है कि कुछ वेवर होना चाहिए या जिस तरह से भी एनपीएस क्रिएट हुए हैं, तो उनके बारे में ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है?
0: देखिए, टाइम टू टाइम बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट, स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स लाए हैं। उसमें जिन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की है उन्होंने उठाया है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, बैंक जो पैसा लेंड करती है वो डिपॉजिटर का पैसा है। हम डिपॉजिटर को तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने आपके पैसे के अगेंस्ट में लोन दिया और वो लोन वापस नहीं आया तो हम आपका डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे या इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, वैसा तो नहीं हो सकता है। अब वेवर का सवाल तभी उठता है जब उस वेवर को कोई सरकार या कोई उसको कॉम्पेंसेट करे, अदरवाइज बैंक अपने तरफ से वेव तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है जो हम लेंड करते हैं वो तो डिपॉजिटर का पैसा है। हाँ, ये जरूर है कि जब मुश्किलें आती हैं और लोगों का बिजनेस बैठ जाता है तो टाइम टू टाइम बैंक SOTS जिसको कहते हैं, स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, वो लेकर के आता है और उसमें जब भी जो बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो भी काम करते हैं बैंक में वो RBI के रेगुलेशंस के तहत करते हैं, उससे बाहर जाके हम नहीं कर सकते हैं। जितना हमें परमिशन है एज पर रेगुलेशंस उतना काम हम करते हैं, उतना फैसिलिटीज हम देने की कोशिश करते हैं। और टाइम टू टाइम जब ये स्कीम्स आते हैं तो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए और उठाया भी है लोगों ने पास्ट में।
1: सर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस जो बैंक के हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर एंड एल्सवेयर इन द कंट्री, दूसरी जगह पे भी हैं कई जगहों पे, जैसे आपने पहले भी बताया जी। तो कस्टमर जो प्रेफर करते हैं जेएंडके बैंक में, उनकी प्रेजेंस जो फैसिलिटीज हैं अवेलेबल हैं हर जगह, वी कैन से एट द डोर स्टेप्स, लेकिन कई फार फ्लंग एरियाज हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में, जहां बैंकिंग फैसिलिटीज अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है आपका जो बहुत बड़ा मैंडेट भी है, आपको अथॉरिटी भी है, तो उसमें अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। तो सर, इस सिलसिले में क्या प्लान्स हैं आपके?
0: देखिए, ऑलरेडी हमारे 876 ब्रांचेस हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जो फार फ्लंग एरियाज है, अनबैंक्ड एरियाज है, वहां पे हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2000 से ऊपर हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है, CSPs, तो ये ऑलरेडी खिदमत सेंटर्स के रूप में काम कर रहे हैं। और जब भी कहीं पे हमें ये समझ आता है या हमें ये इन्फॉर्म किया जाता है RBI या NABARD के द्वारा कि यहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है जहां पे लोगों को 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है बैंकिंग के लिए, वहां हम डेफिनेटली एक ना एक बैंकिंग पॉइंट बनाते हैं, चाहे वो बैंक BC के माध्यम से हो या ब्रांच के माध्यम से हो। अभी एक चीज और ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारा ब्रांच जो है वो वायबल होना चाहिए। अगर हम ब्रांच खोल रहे हैं, अगर वो इनकम जनरेटिंग नहीं हुआ, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आया, तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक इसका कॉस्ट होता है। इसके अलावा भी अगर हम बीसी लगाते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट लगाते हैं, उनको अगर सफिशियंट इनकम जनरेट नहीं होता है, मान लीजिए पॉपुलेशन उस जगह का 2000 या 2500 है, 3000 से कम है, तो वायबिलिटी का इशू आ जाता है। और कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर उसको फायदा नहीं हो तो वो वहां पे रहेगा नहीं। तो इसी हिसाब से जो अभी मोटा मोटी तय है कि 5000 के पॉपुलेशन वाले हर जगह पे एक ब्रांच होगा और 5 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर से ज्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़े। अभी फिलहाल हमारा जो एवरेज है वो 2 से 3 किलोमीटर के अंदर का है। हमें हमारे मैक्सिमम ब्रांचेस ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहां लोगों को 2-3 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। आगे भी जो भी ऐसे और एरियाज रहेंगे जहां पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, हम डेफिनेटली ब्रांचेस खोलेंगे या बीसी पॉइंट्स लगाएंगे।
1: सर, आफ्टर गवर्नमेंट जेएंडके बैंक इज कंसिडर्ड नंबर 2 एम्प्लॉयर, जो यंग एजुकेटेड लोग हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, और हमेशा मेरिट पे ही जेएंडके बैंक में क्लर्क्स की जॉब्स या ऑफिसर्स की जॉब्स आई हैं। लेकिन कई साल से कोई कहता है, मतलब दिस इज बीइंग सेड कि पिछले 4-5 साल से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, जनरल जो है टू गेट एम्प्लॉयज इन ह्यूमन रिसोर्स जो चाहिए, उसको या तो रोका गया है या किसी वजह से पॉज किया गया है। तो क्या रीजन्स हो सकते हैं और आपका इसमें किस तरह का विजन है और किस तरह का आप प्लान रखते हैं? सर,
0: देखिए, सही कहा आपने, लेकिन वही मैंने जो कहा ना कि बैंक अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उससे फिर बैंक को सस्टेन करना या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक

0: पे। और उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का, वो बहुत हाई था। मतलब जितना इनकम हमारा था उससे उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था, और कॉस्ट में मेजर 75-80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं इनकम बढ़ा के, तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए। लास्ट पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया। किसी भी टाइम में अगले 2-3 महीने में इसका अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो हम इस साल हमारा प्लान में ये है कि हम रिक्रूट करेंगे।
1: अमिताभ चटर्जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: सामईन, जे एंड के बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रहेगी।

0: किसी भी टाइम में अगले 2-3 महीने में इसका अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो हम इस साल हमारा प्लान में ये है कि हम रिक्रूट करेंगे।
1: अमिताभ चटर्जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: सामईन J&K बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप अपनी आरा और फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस खसूसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: अभी आप आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का ये खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। CBI ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। NEET UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को NEET UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
4: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
3: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर सरमा

के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि

0: देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होके उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए माई गॉव.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया, देश भर से कई संदिग्धों को

0: हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा, इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9 बजे हैं। समाप्त करें फिल्मी नगमे।

समीन आप घटना फिल्म से नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अब आइए सुनते हैं मन मंदिर फिल्म से नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण की बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: समीन आपने मन मंदिर फिल्म से नगमा सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। रात के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नाशर होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की TVK हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है। कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात की हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने NEET UG इम्तिहान मुनक़द किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को ख़त्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के DG अभिषेक सिंह ने बताया कि NTA तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनाकिद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनाकिद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
1: इससे कबल आज दिन में NTA ने इस माह की 3 तारीख को मुनक़द किए गए NEET UG 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप SOG ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। SOG ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल ज़राए के मुताबिक राजस्थान पुलिस SOG ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। BJP के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा सरमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़दा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और

0: यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस, मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बुहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इकतसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तिमा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मुश्तरका तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि एनसीईआरटी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खित्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और एक डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। IPL में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। CBI ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है।

0: तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरों ने असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोज़ा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समय समाप्त करें प्रोग्राम हम कलम इस वक्त के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: हम कलम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपका मेजबान मोहम्मद हुसैन जफर। दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम की जो रिवायत है उससे जरा हट के बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा दौर में उर्दू जबान, खासतौर से उर्दू शायरी की जो हैयत है, जो हालत है, वो किस समत जा रही है। उर्दू हिंदुस्तान की मकबूल तरीन और गंगा जमनी एक जबान रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जबान जो है, ईमानदारी से कहें तो दम तोड़ने लगी है। वजूहात अपनी जगह, लेकिन ये भी सही है कि आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जबान की आबियारी करते हैं, इसे अपने खून से सींचने की कोशिश करते हैं और इसे जिंदा रखते हैं और उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारी दो खास मेहमान हैं। एक तो साजिदा सबा साहिबा हैं, इनका ताल्लुक लखनऊ से है, शहरी लखनऊ से, मीर के शहर से, और तारा इकबाल साहिबा जिनका असली नाम फरीदा खातून है। तो इनका जो है ये राय बरेली से, बड़ी मशहूर जगह है यूपी की, सियासी तौर भी बड़ी मशहूर है। तो दोनों का ताल्लुक उर्दू से है और दोनों यूपी की मशहूर शायरा हैं और हमने सोचा कि आज इनसे हम थोड़ा सा बात कर लें। तो आप दोनों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में।
4: शुक्रिया।
3: तो मैं जानना चाहता हूँ, देखिए हम कश्मीर में, ये है कि कश्मीरी हमारी मादरी जबान है, मगर हमारी असल जबान जो है ना, जिसे हम दिल से चाहते हैं, दिल से पसंद करते हैं, बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उर्दू है। गो कि हमारी उर्दू, दोनों जो उर्दू के जो दबिस्तान हैं, दोनों से मुख्तलिफ है, उसमें कश्मीरियत का रंग अक्सर झलकता है। तो मैं जानना चाहूंगा पहले साजिदा साहब, आप इसका जवाब दे दें कि आज के दौर में आप उर्दू जबान और उर्दू शायरी को कहाँ देखती हैं?
4: जी, बहुत शुक्रिया आपका। उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने अभी फरमाया कि अपना रंग खो रही है या अपना वजूद खो रही है, लेकिन मैं चूंकि रहती हूँ इस दुनिया में अक्सर, और साथ ही मेरा ताल्लुक भी ऐसे लोगों से रहता है कि जो हमारी यंग जनरेशन अभी आ गई है हमारे लखनऊ में, तो उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया है गज़ल से और उर्दू से और अदब से। मुझे अब, हालांकि मैं पहले जब सुनती थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जो बात आपने कही वो शायद सही है, लेकिन मुझे अब लगता है ऐसा, चूंकि मैं इस दुनिया में अंदर तलक हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं खोएगी, कहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, और इसकी बहुत पजीराई हो रही है और बहुत आगे जाने की जद्दोजहद कर रही है, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो तारा इकबाल साहब
5: जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फिर एक बार तो साजिदा साहब कह रही है कि उर्दू कहीं नहीं जाने वाली है, उर्दू रहेगी। ये एक फेज होता है, हर चीज का एक उतार चढ़ाव रहता है, फेज रहता है। क्योंकि आप भी यूपी से हैं और खुद शायरा हैं, आपसे जानना चाहती हैं कि गजल जो है, गजल का अगर हम सेंटर फोकस जो है वो औरत ही है। अगर गजल की जब तशरी की जाती है तो कहते हैं वही है कि औरतों से बातें करना है, औरतों से मुतल्लिक बातें करना। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम उर्दू शायरी की तारीख देखें तो औरतों की तादाद बहुत कम है मर्दों के मुकाबले में। आप बस एक

0: औरत इसकी वजह क्या मानती है?
1: हमारा सामाजिक ढांचा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि औरतों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी किसी भी चीज की, न सिर्फ अदब में, अगर अदब वो पढ़ती भी थी लिखती भी थी तो वो सामने नहीं ला सकती थी, खुद को लोगों के बीच में नहीं ला सकती थी, शायद ये एक बड़ी वजह हो। मगर ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में आप देखिए, चाहे मुगल पीरियड रहा हो या कोई भी पीरियड रहा हो, अब्बा खातून को देख लीजिए आप, आपके शहर
0: जी,
1: आपके
0: हम तो उर्दू की बात कर रहे हैं,
1: नहीं हाँ ठीक है, तो बहरहाल ये कि था कि औरतों से मैं भटक गई थोड़ा सा, तो उर्दू से ताल्लुक ये है कि उर्दू में काफी लिखा गया है, काफी पढ़ा गया है, मगर हाँ कि मुनासिबत में मर्दों के कम है, मगर ये दौर हमारे लिए बड़ा अच्छा है।
0: शायरी के मुख्तलिफ जो अदवार हैं
1: जी,
0: गालिब के अगर जमाने की बात करते हैं तो शायद ही किसी शायरा का
1: जी
0: नाम
1: जी बेशक, बेशक
0: नहीं नहीं है
1: बेशक।
0: तो उसके बाद फिर कुछ जो आए
1: दारा बनवफ जी,
0: तो
1: जी
0: वो उनका ताल्लुक जो उन खानदानों से था जो अदब से वाबस्ता है,
1: जी जी अदबी खानदानों से,
0: अदबी खानदानों से वाबस्ता था,
1: बेशक,
0: तो उस वजह से या तो उन्हें वो पजीराई भी मिली, मौका भी मिला,
1: मौका जी। मिला।
0: और सबसे बड़ी बात है कि घर का सपोर्ट मिलना,
1: बिल्कुल बेशक
0: है ना, क्योंकि लोग तो शायरी सुनना भी पसंद करते हैं, शायरी करते भी हैं, मगर इसमें वो मेल डोमिनेंस का जो फैक्टर है वो ज्यादा रहा है
1: जी,
0: ना?
1: जी, जी।
0: एक ही खानदान है हमारा, जावेद अख्तर साहब, जानिसार अख्तर साहब, तो मजाज, ये तीनों तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन जानिसार अख्तर की जो अहलिया है
1: जी,
0: तो उनकी भी किताब है जेर लब, मगर उसका कहीं जिक्र नहीं है, जबकि बहुत ही अच्छी शायरा रही है। तो क्या आप समझती हैं कि वो खुद इस शोबे में आगे नहीं आना चाहती हैं, या उन्हें इसमें आपको लगता है कि मौका नहीं मिला या रोका गया?
1: सब मेरे एक शेर है पुराना
0: जी,
1: अगर आप कहें तो मैं हाजिर करती हूँ कि खुद से लड़े जमाने से फिर खानदान से,
0: अरे क्या बात है,
1: खुद से लड़े जमाने से फिर खानदान से,
0: जी जी,
1: एक शायरा के वास्ते कितने मुआवजे हैं,
0: वाह क्या बात।
1: तो सिर्फ इतना कहना था हमारा कि जावेद अख्तर साहब की जो पर नानी थी हिरमा साहिबा
0: जी, जी
1: जी, मुझे उनका वार्ड मिला हुआ है, तो वो भी शायरा थी, बहुत अच्छी शायरा थी वो, तो इनकी तो खैर नसों में शायरी है। मगर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ उर्दू में शायरी लिखी नहीं गई या औरतों ने नहीं लिखी, औरतों ने बहुत अच्छी शायरी की है और बहुत अदब में अच्छा उनका मकाम है, मगर ये था कि खुल के वो किताबी शक्ल में शायद नहीं आई है, इसीलिए हमारी नज़र से नहीं गुजर रही है।
0: सही बात।
1: तो अभी जो वक्त मिला है हमें, हमने इसका फ़ायदा उठाया है, हमने खुद 7th क्लास लिखना शुरू किया था और अभी 10-12 साल से हम स्टेज पे आए हैं, तो शायद यही वजह है।
0: पिछले 2-3 दहाइयों में ये देखा कि औरतों की कतार
1: जी
0: सी सामने आई है,
1: बिल्कुल,
0: और ऐसी मतलब अच्छी शेरगोई करती हैं
1: जी,
0: कि वो तो अब मतलब उनके बगैर मुशायरे चलते नहीं,
1: बेशक बेशक,
0: है ना,
1: बेशक।
0: तो ये 2-3 दहाइयों में ये जो एक नया मोड़ मिला,
1: जी जी,
0: नया मोड़ मिला,
1: या तब्दीली आई,
0: तब्दीली आई, औरतें सामने आई हैं, इसे आप किस तरह देखती हैं, मतलब इसके पीछे आप क्या मुहरकात पाती हैं?
1: हमें ये लगता था कि जितनी भी सारे जात हैं हमने बनाए हैं, तो ये सारे जात हमने तोड़ने की कोशिश की है और उन जगहों पे अक्ल से, समझ से और अपने खानदान की इज्जत को लेकर निकले हैं, तो वो लोग भी हमें इजाजत दे रहे हैं कि हाँ आप बाहर निकल सकते हैं, आप कर सकते हैं, कुछ तो हमारे अंदर के बनाए हुए थे और कुछ समाज के बनाए हुए थे
0: जी।
1: तो जब हमने अपने को साबित किया तो उन्होंने भी हमें आजादी दी और हमको यहाँ तक आना है कि आ गए हम, और हमारे पीछे एक पूरी नस्ल आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। हमें हमारी उर्दू का जो मुस्तकबिल है, खास तौर से उर्दू खवातीन का जो मुस्तकबिल है शायरी की, उससे मुनासिबत से खुशाइन दिख रहा है।
0: साजिदा सवा जी,
2: जी फरमाए,
0: आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद मुशायरा पढ़ती भी हैं, मुशायरों में जाती भी हैं, तो आपके तजुर्बात जरूर हम जानना चाहेंगे, क्या मेल डोमिनेंस उसका कोई इफेक्ट रहता है, क्या बराबर के मौके मिलते हैं, क्या बराबर की पजीराई मिलती है?
2: नहीं, ये बात एकदम सही कह रहे हैं कि आप मेल डोमिनेंस रहता है, मेल डोमिनेंस रहता है और हमेशा से देखा मैंने, चूँकि मैं लखनऊ में ही थी और मैं एक होम मेकर हूँ, अपने बच्चों को पाला पोसा मैंने, तो उस दौरान शायरी लिखी तो, मगर ये शायरी कहीं भी उसकी कोई अहमियत नहीं थी, मतलब लिखती और रख दी थी बस, और अपना काम चल रहा था, चूँकि वो चीज़ें जो जैसे मुनव्वर राना साहब हैं, तो मेरे उनके घर के ताल्लुकात में मुझे बहन मानते थे छोटी, तो उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें इस तरह की सुनी थी जिस पर आप कह रहे हैं मेल डोमिनेटेड, ये चीज़ें थीं, मैंने देखी भी उनके साथ रहकर, तो फिर ये इजाज़त नहीं मिलती थी घर से, ये बात सही थी कि मतलब नहीं तुम्हें लिखना है, अगर कभी उनको पता भी लगा शौहर साहब को बहुत सालों बाद, तो ठीक है तुम लिखो अपने घर पर लिखो, और दूर नहीं जाना है, जाना है तो लोकल जाना है, बस खाली पढ़ने भी जाना है तो लोकल ही जाना है, दूर की तो इजाज़त ही नहीं थी। ये तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं सेकेंड टाइम बेंगलोर जा चुकी हूँ, और फिर इसके बाद सेकेंड टाइम ये कि मैं कश्मीर आई हूँ, चूँकि बहुत दिल में तमन्नाएँ थी कश्मीर को देखने की, शायद अल्लाह पाक ने रास्ता निकाला, तो इस तरह

0: अब हम दूर जाने लगे, अब इजाजत मिलने लगी। तो ये चीजें सबके जहन में थी, घर वालों के जहन में थी, और हम जो शायरात थे हमारे जहन में भी थे। और जो मुहज्जब शायरात है, मैं एक एक कैटेगरी होती, दो तरह की होती है हर जगह, तो उन्हें खुद भी हेजिटेशन होता था, हमें खुद भी होता था कि नहीं ठीक है, हमें जो बुलाएगा इज्जत से तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो ये था एग्जैक्टली।
1: किसी भी जबान के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उसको जिंदा रखना है तो उससे पढ़ाया जाए, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाया जाए। अब हम एक साइंटिफिक दौर से गुजर रहे हैं जहां उर्दू क्या हिंदी की भी कोई जरूरत अब महसूस नहीं हो रही है, है ना, इस कंप्यूटर एज में। तो बहुत सारी जबानें इससे पहले भी रही हैं कि जिनका वजूद ही नहीं है। आपके लखनऊ में तो कई सारी जबानें हैं लोकल जो वहाँ पे थे, अब नहीं बोली जा रही
2: है,
1: वरना तो
2: खत्म
1: हो रही है। हर डिस्ट्रिक्ट की,
2: हर
1: दूसरे डिस्ट्रिक्ट की एक अलग जबान थी। तो क्योंकि आपने पहले बता दिया कि उर्दू तो रहेगी, लेकिन क्या वहाँ पर अभी भी स्कूलों में ये पढ़ाई जाती है आपके यहाँ?
0: नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये जो है स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूलों में हमने भी जो पढ़ाया तो संस्कृत हमारे लिए थी, एक सब्जेक्ट अलग से आप ले सकते हो, और उर्दू नहीं थी, इसका हमें मलाल बहुत ज़्यादा है। और स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, इसका भी मलाल है, क्योंकि एक सब्जेक्ट उर्दू और एक सब्जेक्ट आप संस्कृत भी रख सकते हैं, कोई सा भी रख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चाहत होती है कि वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ेगा। क्योंकि लैंग्वेज तो किसी की होती नहीं, लैंग्वेज उसकी होती है जो उसे अपनाता है, जो उसे प्यार करता है, जो उसे चाहता है, लैंग्वेज उसकी होती है असल में। तो ये तो है कि वहाँ के स्कूल्स में ऐसा नहीं, लेकिन अब एक नई चीज़ हमारे यहाँ, जैसे हमारे लम्बाटी ने स्कूल है, कॉलेज जो है, तो वहाँ पर एक अर्शी अलवी साहिबा है और उनके उनके भाई हैं, वो दुबई से, तो वो एक्चुअली वो दुबई से कंडक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने उस उर्दू को उन इंग्लिश स्कूलों में कहा है, वहाँ अपने टीचर्स रखे हैं, वहाँ अपनी सिलेबस देते हैं वो, और वहाँ बच्चों को ऑप्शन दिए गए हैं कि आप, तो ये बहुत अच्छी चीज़ वो लोग कर रहे हैं। तो ये अच्छा काम एक हो रहा है, शुरुआत अभी हो चुकी है, कई साल हो गए इसको।
1: हमारे यहाँ भी उर्दू के जो मौजूदा हालात हैं वो ठीक नहीं है, मगर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जितना भी हमारा अदबी सरमाया है पूरे मुल्क में, हिस्टोरिकल जितना भी सरमाया है, वो इसी जबान में है,
0: इसी जबान,
1: क्योंकि ये भारत की जबान थी, किसी मखसूस मजहब की जबान नहीं थी। क्योंकि अगर ये किसी मखसूस मजहब की जबान होती तो शायद गोपी चंद नारंग साहब इतने अजीम उर्दू के नहीं होते, और उन जैसे बहुत सारे फिराक गोरखपुरी
2: साहब
1: जैसे,
2: हाँ,
1: तो नहीं होते। तो आपकी नज़र में अगर ये जबान और खासतौर से उर्दू शायरी को फरोग देना है तो क्या कुछ किया जाना चाहिए?
0: जी, मैं इस सिलसिले में बहुत छोटा सा मैंने कदम उठाया है, मैं अपना एक बैनर सिलसिला अदब का, मैंने उसका नाम ही रखा है ये, और मैं मुझे करीब दूसरा साल लग चुका है, मैं उस पर प्रोग्राम करती हूँ, और अपने जो हमारे शहर के, अभी मैं शहर तक ही महदूद हूँ, चूँकि वही बात आ गई, मैं एक लेडी हूँ तो मेरा दायरा भी है। तो मैं जो हमारे शहर है लखनऊ के जो शायर हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को कि तुमने अच्छा काम शुरू किया, कि तो हमने फ़रोग के लिए ही इसको शुरू किया कि हमने अपना बैनर एक बनाया, उससे मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, तो लोग वहाँ पर आते हैं। उस पर मैं एक चीज़ मैंने एक और रखी थी कि मैं एक सब्जेक्ट ऐसा रखती थी, सिर्फ मैं नशिश नहीं करती थी, सिर्फ शायरी नहीं करवाती हूँ, थोड़ा मज़ीद उसमें मैं इजाफा किया कि हम किसी न किसी उर्दू के टॉपिक को भी उठाएंगे, और जब आलिम लोग इकट्ठा होते हैं तो कम से कम हमसे कुछ बात भी होनी चाहिए उनकी। तो मैंने कई बार रस्म अलखत के ऊपर बात उठाई, कई बार तहजीब के ऊपर, अदब के ऊपर, तो हमारे डिस्कशन ये होता है। ये मैं थोड़ा सा एक कदम मैंने उठाया है, आप लोग के द्वारा है तो आगे बढ़ेगा, बस ये छोटे छोटे कदम है जो हमको उठाना है अपने लेवल से।
1: तो क्योंकि आप दोनों शायरा हैं तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपको भी सुना जाए, क्योंकि शायर के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक उससे सुना ना जाए उसे इत्मीनान नहीं आता। ये हर एक शायर के साथ है, क्योंकि उसकी पूंजी यही है। ये जो मस्त मलंग तरह के लोग होते हैं तो उनको तो बस ये है कि बस उन्हें सुना जाए और दिल से सुना जाए। तो मैं पहले ये जो सजदा सभा साहिबा, आपसे चाहूँगा कि आप अपना कुछ कलाम सुनाएं हमारे सुनने वाले दोस्तों को।
0: बिल्कुल सुनाऊंगी, और साथ ही ये भी बताऊंगी आपको कि मैं, ये मेरी किताब है किचन से कलम तक, जी
1: माशाल्लाह,
0: दो साल हो गए, अभी 24 में आई थी, तो इसको देखने से आपको लगेगा कुछ किचन की चीजें इसके अंदर, लेकिन नहीं, इसमें किचन से कलम तक की तो मेरी शायरी इसमें है। फिलहाल मैंने जो यहाँ के लिए शायरी लिखी है अभी कल परसों में, तो चीजें देखी हैं जो मेरे दिल में था, मैं आपको वो सुनाऊंगी पहले।
1: जरूर जरूर
0: जी। तो मतलब हाजिर करती हूँ कि यहाँ फूलों से, खुशबू से, फजाओं से, बहारों से, कश्मीर की बात कर रही हूँ, उसकी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। यहाँ फूलों से, खुशबू से, फजाओं से, बहारों से, मेरा रिश्ता है बचपन से यहाँ की रह गुजारों से। किताबों में मैंने

0: पढ़ा था और तस्वीरें देखी थी शिकारों की,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा रिश्ता है बचपन से यहाँ की रहे गुजारों से। और शेर सुनिएगा कि ये सुनते आए हैं कब से तेरी दुनिया का ये खित्ता,
1: सुनते आए हैं कब से कि
0: ये
1: तेरी
0: सुनते आए हैं
1: दुनिया का
0: कब
1: यह
0: से
1: खिता।
0: तेरी
1: वाह
0: दुनिया का यह खित्ता, हंसी तर है जमाने में जहाँ के सब नज़ारों से,
1: बहुत खूब।
0: हंसी तर है जमाने में जहाँ के सब नज़ारों से। और यहाँ है सिलसिला गुल का, यहाँ टूलिप महकते हैं, यहाँ है
1: सिलसिला
0: सिलसिला गुल
1: गुल का
0: का,
1: यहाँ
0: यहाँ
1: ट्यूलिप
0: टूलिप
1: महकते
0: महकते हैं,
1: हैं।
0: यहाँ पर प्यार से मिलना सुना है ये हजारों से,
1: बहुत खूब।
0: यहाँ पर प्यार से मिलना सुना है ये हजारों से। और खुदा का शुक्र है हम जो यहाँ पर आज आए हैं, खुदा का शुक्र है हम जो यहाँ पर आज आए हैं। फजाए जाफरानी है सुना है रेगजारों में,
1: बहुत खूब।
0: फजाए
1: जाफरानी
0: जाफरानी
1: है
0: है सुना
1: सुना
0: है
1: है रे।
0: रेगजारों से। और किताबों में पढ़ाता झील ऐसी एक यहाँ पर है, किताबों में पढ़ाता झील ऐसी एक यहाँ पर है सजी।

0: यहाँ पर आज आए हैं, फजाए जाफरानी है सुना है रेगजारों में,
1: बहुत खूब,
0: फजाए जाफरानी
1: जाफरानी
0: है
1: है
0: सुना
1: सुना
0: है
1: है रे।
0: रेगजारों से, और किताबों में पढ़ाता झील ऐसी एक यहाँ पर है, किताबों में पढ़ाता झील ऐसी एक यहाँ पर है, सजी रहती है जो हरदम चमकते इन शिकारों से,
1: बहुत खूब,
0: सजी रहती है जो हरदम चमकते इन शिकारों से। और मक्त हाजिर करती हूँ कि लिए तस्वीर आंखों में बसाए दिल में हर मंजर, लिए तस्वीर आंखों में बसाए दिल में हर मंजर, मोहब्बत नाम है मेरा ये कह देना चनारों से,
1: चिनारों से, बहुत खूब,
0: मोहब्बत
1: बहुत
0: नाम
1: खूब
0: है मेरा ये कह
1: कहना
0: देना
1: है
0: चनारों
1: चिनारों
0: से।
1: से। आपसे फिर कुछ जरूर सुनेंगे, लेकिन
0: बिल्कुल
1: तारा इकबाल साहिबा भी तैयार है अपना कलाम
0: बिल्कुल
1: सुनाने के लिए, तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए।
2: जी, अभी जब यहाँ पे आए, आपके यहाँ जाहिर कश्मीर आए हैं, कहने में भी अजीब सा लग रहा है, कश्मीर में आके जो
1: जी
2: ख्वाब, जिसका सिर्फ ख्वाब देखते थे, जिसका सिर्फ नाम लिया करते थे खूबसूरती के नाम से,
1: जी
2: तो बस वहीं पे आए तो सब याद आया, घर याद आया, फैमिली याद आई, तो बस यही था कि बुलंदियों का सफर रास ही ना आया मुझे,
1: बुलंदियों का सफर
2: रास ही ना आया
1: रास ही
2: मुझे,
1: ना आया मुझे।
2: बुलंदियों का सफर रास ही ना आया मुझे, तेरे बगैर तो कश्मीर भी न भाया मुझे,
1: मुझे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात
2: तेरे
1: है।
2: बगैर तो कश्मीर भी न भाया मुझे, तेरे बगैर तो कश्मीर भी न भाया मुझे, कि कोह फूट पड़े आबशार बह निकले,
1: कि कोह फूट पड़े आबशार बह निकले।
2: कि कोह फूट पड़े आबशार बह निकले, ये गर्मजोशी से किसने गले लगाया मुझे,
1: क्या
2: क्या
1: बात
2: बात,
1: है,
2: ये
1: बहुत।
2: गर्मजोशी से किसने गले लगाया मुझे। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारी और भी गजलें हैं
1: आप एक और गजल सुना ही दे दीजिए,
2: जी।
1: उसके बाद हम फिर साजिद साहब से दरखास्त करेंगे कुछ और सुनाने की।
2: जी, भाई मैं सुनाती हूँ आपको कि
1: जी
2: जी,
1: हाँ,
2: मेरी गजल का मतलब पेश है कि यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं,
1: यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं।
2: पैरों से लेके पंख तलक खुद बनाए हैं,
1: क्या बात है,
0: क्या बात है,
1: क्या बात है।
2: यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं, पैरों से लेके पंख तलक खुद बनाए हैं, और अब खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता, अब खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता, जितने ही सारे जात हैं हमने बनाए
1: बनाए
2: हैं,
1: हैं, बहुत
2: हमने
1: अच्छा।
2: बनाए हैं, और पुरएतमादियां हमें विरसे में कब मिली, पुरएतमादियां हमें
1: विरसे में कब
2: विरसे में
1: मिली।
2: कब मिली, खुद पर नया नया अभी ईमान लाए हैं,
0: हाँ बात है,
2: खुद पर नया नया अभी
0: ईमान लाए
1: ईमान
0: हैं,
1: लाए हैं।
2: ईमान लाए हैं, खुद पर नया नया अभी ईमान लाए हैं, और कि वहमो गुमा के बढ़ते तलातुम के दरमियां, वहमो गुमा के बढ़ते तलातुम के दरमियां, मेरे यकीन ने कितने नए पुल बनाए
1: बनाए
2: हैं,
1: हैं,
0: क्या
1: क्या
0: बात है,
1: बात है,
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: अच्छा,
2: शुक्रिया, मेरे यकीन ने कितने नए पुल बनाए हैं, और ये शेर बतौर खास साहब की, निकले कहानियों से तो खुद दास्तां हुए,
1: निकले कहानियों से तो खुद दास्तां हुए। क्या
2: हम चांद पे भी नक्श कदम छोड़ आए हैं,
1: बात है,
2: हम चांद पे भी नक्श कदम
1: छोड़
2: छोड़
1: आए
2: आए
1: हैं,
2: हैं, चाहे किसी भी दौर की तारीख देख लो, चाहे किसी भी दौर की तारीख देख लो, हर मोर के पे हमने भी खैमे लगाए
1: लगाए
2: हैं,
1: हैं, बहुत खूब,
2: हर मोर के पे हमने भी
1: खेमे
2: खैमे
1: लगाए
2: लगाए
1: हम।
2: हैं, और है कौन सा महाज जिसे सर नहीं किया, है कौन सा महाज जिसे सर नहीं किया, आंचल को हमने फाड़ के परचम बनाए
1: अरे
2: हैं,
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: आंचल को हमने फाड़ के परचम बनाए हैं, और तारा जरा सा नर्म ही अपना खमीर है, तारा जरा सा नर्म ही अपना खमीर है, कुछ और मत समझिए जो हम सर झुकाए हैं,
1: बहुत खूब,
2: कुछ
1: बहुत
2: और मत
1: खूब।
2: समझिए जो हम सर
1: आपको
2: झुकाए हैं।
1: आंचल को फाड़ के हमने परचम बनाए हैं, तो मुझे मजाज
2: जी
1: याद
2: जी
1: आया।
2: जी जी
1: हाँ,
2: जी जी बस वही
1: तो
2: वही
1: आज आपने उनको जवाब दे दिया मजाज आपको।
2: जी जी
1: तो खैर साजिद साहब, अगर आप कुछ और भी सुनाना चाहते हैं तो फिर हम मुख्तरन और बात
0: जैसा
1: करें।
0: आप कहें
1: जी आप बिस्मिल्लाह करिए, क्योंकि हम ये मौका नहीं गंवाना चाहते।
2: जी, बेशक बेशक,
0: बस थोड़ी फिक्र मेरे अंदर रहती है, तो फिक्र पे एक शायरी है, सुन लीजिए गजल, एक मतलब हाजिर है कि
1: बिस्मिल्लाह।
0: अजब ये खेल है इस तीरगी का, अजब ये खेल है इस
1: इस तीरगी का
0: तीरगी का, पता चलता नहीं कुछ रोशनी का,
1: क्या बात है,
0: पता चलता नहीं कुछ रोशनी
1: रोशनी
0: का, और
1: का।
0: शेर सुनिएगा कि अचानक हो गया क्या दोस्तों को, अचानक हो
1: हो
0: गया
1: गया
0: क्या
1: क्या
0: दोस्तों
1: दोस्तों
0: को,
1: को,
0: दुशाला ओढ़ बैठे दुश्मनी का,
1: नारे
0: दुशाला ओढ़ बैठे
1: बैठे दुश्मनी
0: दुश्मनी
1: का,
0: का, वो थककर रास्ते में रह गए हैं, تھک کر رات

0: रास्ते में रह गए हैं। बहुत दावा था जिनको रहबरी का, बहुत दावा था जिनको रहबरी का, और शेर यूं आ कि कदम उनके बहक जाते हैं अक्सर, कदम उनके बहक जाते हैं अक्सर, सबक पढ़ते नहीं जो जिंदगी का।
1: क्या बात,
0: सबक पढ़ते नहीं जो जिंदगी का। और वहां पर अमन क्यों लिखा गया है, वहां पर अमन क्यों लिखा गया है, जहाँ चर्चा रहा है जंग ही का। जहाँ चर्चा रहा है जंग ही का, और अजब पल था अजब ही मरहला था, अजब पल था अजब ही मरहला था, किया था फैसला जब खुदकशी का।
1: बात को
0: किया
1: बात।
0: था फैसला जब खुदकशी का, वबा सैलाब बीमारी मुसीबत, वबा सैलाब
1: बीमारी मुसीबत,
0: ये मंजर है सियासी बेहिसी का,
1: बेहिसी का।
0: ये मंजर है सियासी बेहिसी का। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि सबा लफवाजियों का फायदा क्या, सबा लफाजियों का
1: फायदा
0: क्या, अगर मकसद न हो कुछ शायरी का,
1: बात को,
0: अगर
1: बात।
0: मकसद न हो कुछ शायरी का। ये मेरी किताब से मैंने आपको सुनाया था, किचन से कलम।
1: जी जी जी जी, बहुत उम्दा आपने कलाम सुनाया, दोनों ने, आपने भी। तो हम फिर अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। किसी भी जबान को जिंदा रखने के लिए हम समझते हैं कि एक तो हुकूमत की पजीराई बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो अदबी अंजुमनें हैं उनका काम। तो पहले तो बड़े बड़े फंक्शन हुआ करते थे, कौमी सतह के, बैन अवकामी सतह के मुशायरे हुआ करते थे, सिम्पोजियम हुआ करते थे, लेकिन बदल के वक्त से साथ साथ इसमें बहुत कमी आने लगी है। आप इस बारे में क्या राय रख रही हैं साजिदा जी?
0: जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कमी आई है। हमें भी इसकी बड़ी फिक्र रहती है कि कैसे चीज़ें, क्योंकि जो उर्दू ज़ुबान है ये अपने आप में एक तहजीब है, अपने आप में एक अदब है, एक कल्चर है। ये जब सामने खड़ा होता है वो इंसान जो उर्दू से वाबस्ता है तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, मैंने हमेशा से देखा, बचपन से देखा है। तो इसमें ऐसी क्या ख़राबी आ गई जो हमारी जो सरकारें हैं क्यों इसके ऊपर काम नहीं करती? मेरे ख्याल से उन्हें करना चाहिए, यह एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ज़ुबान है, प्यारी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है, और सबको जोड़ने वाली ज़ुबान है, ये मैंने देखा है। तो ये कमियां तो हैं, और हमारे यहाँ जो आपने जिसका जिक्र किया कि जो हमारी तंजीमें हैं वो इस पर काम कर तो रही, मैं नहीं कहूँगी कि लखनऊ में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए, जितनी फिक्र के साथ होना चाहिए, वो फिक्र कहीं थोड़ी थोड़ी इन बेहिसियों की वजह से थोड़ा उनका भी दिल हट रहा है, जैसे ऐसा कहा जा सकता है, जैसे मैंने सुना है देखा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जब चीज़ें हमारे हाथ से निकलने लग जाती है तो हमें उस पर उस वक्त ही ज़्यादा गौर करना होता है, उस वक्त ही ज़्यादा काम करना होता है। हम उसमें अपनी तरफ से लापरवाह ना हो तो बेहतर रहेगा, बाकी तो सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया अभी के रेहान भाई नाम है उनका, जो दुबई में है, अर्शी अलवी साहिबा उनके वो भाई हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मैं ये उनसे मेरी मुलाकात मैंने
1: बस मेरे ख्याल से वही काम कर रहे हैं,
0: मैंने
1: सब वही दो काम कर रहे
2: हैं, सब कतर कलम की।
0: मैंने उनसे मुलाकात की इसी सिलसिले में जाके, फिक्र के लिए ही अपनी, कि आप इस तरह का काम करिए, आप इस तरह का काम और स्कूलों में कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैंने उनसे ये कहा कि निसाब में आप शामिल कर दीजिए उर्दू को
1: जी।
0: तो ये हमारे कदम रहते हैं छोटे छोटे से, और हम फिक्र में हैं, और इंशाल्लाह हम लोग जब तक हैं थोड़ा थोड़ा सोचते ही रहें कम इंशाल्लाह।
1: आप कुछ
2: जी, मैं इस बात को और थोड़ा वाजे करना चाह रही थी कि मैं चूंकि टीचर हूँ।
1: आप टीचर हैं तो हाँ सही बात, आप बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं,
2: समझ सकती हूँ। सरकारी स्कूलों में, मैं सरकारी टीचर हूँ, सरकारी स्कूलों में उर्दू है, ऐसा नहीं कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती या उर्दू नहीं है, मगर एक होता है एक फॉर्मेलिटी करना और एक होता है बाकायदा तवज्जो देना। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि उर्दू एक वक्त था जब उर्दू को लोग नहीं पढ़ते थे, आज उर्दू पढ़ने वाले जो शायरी में खासतौर से रखे हैं कदम, जिन लोगों ने, वो सिर्फ इसलिए रखा है कि उर्दू से हमको शायरी आ जाएगी और शायरी से हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो इसमें आधे लोग तो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए उर्दू की तरफ रुजू हुए हैं, और इस मामले में हमारे रेख्ता फाउंडेशन ने बड़ा कार्य नुमाया किया है, बड़ा काम किया उन्होंने। हालांकि उन्होंने रस्म अल-ख़त हिंदी रखा है, उसका उर्दू के अशार को ज्यादातर हिंदी में रखा है, वो उनका अपना मसला है। बट ये ना कि वो रस्म अल-ख़त रखने के बावजूद भी कई बच्चे हमारे यहाँ के यंग बच्चे, सारे सर आपका थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, यंग बच्चे जो हमारे हैं वो उर्दू में जब उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो वो मान लीजिए उन्होंने जॉन एलिया को पढ़ा, तो अब उन्होंने दो शेर पढ़ लिए उनके, अब उनका दिल चाहता है कि और पढ़े, तो वो फिर उर्दू में आना चाहते हैं और मजबूरी बन जाता है उनको उर्दू सीखना, रस्म अल-ख़त सीखना। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है।
1: देखिए, एक तो उर्दू का जो रस्म अल-ख़त अपना है वो थोड़ा सा मुश्किल
2: है, मुश्किल है, बेशक मुश्किल है, और ज़बानों के कंपैरिज़न में।
1: मैं हिंदी नहीं जानता, لیکن ہندی سمجھتا ہوں میں.

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय समाप्त करें फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम। हेलो आपकी फरमाइश।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश लेकर मैं रोहित मुश्ताक आप सबकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत होंगे, जहां भी होंगे अपने अपनों के साथ खुश खुरम होंगे। सामीन, आपको बताना चाहे कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती हैं। फ़ोन नंबर 2480364 2480364। आए करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत सी फोन कॉल से। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बुझुस रोजा बीरो नारवर पर फारुक अहमद मीर।
0: फारुक साहब, क्या छ करन?
1: फारद कम करन
0: सठा जान। वन तो कुस हु फिल्म बत छ बोजुनास?
1: दिलवाली।
0: दिलवाली फिल्म हुन रिकॉर्ड छु तो या सम बोजुन? कुस हु रिकॉर्ड छु बोजुन दिलवाली फिल्म हुन?
1: जना शुरू किस याद के ईमान।
0: चलो फारुक साहब, के छुन परवाय इस बोजनाओ ते फिल्म दिलवाले यस छ अमुकन काते खूबसूरत फिल्मी बत। वन तो पन्नन साथियन हु नाव तो इस कम कम छ या सम बोजुन?
1: मोहम्मद अकबर वानी। बीरू मीरपुर पे गुलाम अहमद चौपान, इकबाल अहमद डार, रशीद अहमद डार।
0: फारुक साहब, तुहन कॉल करने बापत सठा शुक्रिया। बूझ तो पन्न सथियन सत खूबसूरत फिल्मी बर्थ।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: दीदी, शफात
0: वालेकुम अस्सलाम
1: बात कर रहा हूँ श्रीनगर से। बस
0: जी। शफात, कैसे हैं आप?
1: दुआ, ठीक हो मैम? तो
0: शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का जी।
1: मैं
0: शफात,
1: आपसे, क्योंकि मैंने आज पहली बार ही ट्राई किया तो पहली बार ही कॉल भी लगी है।
0: चलिए, बहुत अच्छी
1: मैं
0: बात है
1: बारी
0: शफात कि आज आपने पहली बार ही कोशिश की और पहली बार ही
1: कॉल
0: फोन लग
1: लगी।
0: गया। बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात
1: जी
0: है।
1: मैम, क्योंकि पहली बार आपसे बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शफात, अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप?
1: जी हम पश्मीने के साथ कर रहे हैं मैम।
0: माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम है कि नहीं?
1: हाँ
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल,
0: पश्मीना जो है ना, ये हमारे कश्मीर की एक
1: ये
0: पहचान
1: कल्चर
0: है।
1: है एक। हाँ बिल्कुल
0: ये
1: मैम,
0: पहचान है और पश्मीने की वजह से भी हमारे कश्मीर को बहुत नामावारी मिलती है, हमारे कश्मीर को, क्योंकि
1: हाँ बिल्कुल,
0: पश्मीना
1: हाँ
0: एक
1: बिल्कुल,
0: पहचान है। बहुत अच्छा लगा
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल,
0: आपसे बात करके, और इतना अच्छा काम करते हैं आप जिससे हमारा कल्चर जो है वो जिंदा रहता है। शफात, ये बताएं कि आजकल के नौजवानों की अगर हम बात करेंगे, क्या लगता है आपको, दिलचस्पी ले रहे हैं इस काम में?
1: बहुत काम है मैम,
0: बहुत
1: बहुत
0: कम।
1: काम। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि कल तो लोग रोजगार के पीछे भी, लेकिन उसमें तो मैम क्या बता सकता हूँ, लोग
0: मुनाफा ज्यादा नहीं मिलता है।
1: नहीं मिलता है मैम। नहीं, क्योंकि इस दौर की इस महंगाई में थोड़ा इस पे काम मिलता है, महंगाई
0: शफात,
1: थोड़ा
0: बहुत
1: ज्यादा
0: अच्छा
1: है।
0: काम है ये, लेकिन यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला और भी
1: आमीन
0: आपको
1: मैम
0: कामयाबी
1: जी,
0: दे,
1: आमीन
0: ताकि
1: आमीन आमीन।
0: हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी इस काम के साथ शौक और प्यार के
1: हाँ
0: साथ जुड़
1: बिल्कुल,
0: जाए।
1: हाँ
0: ये
1: बिल्कुल
0: बताइए
1: मैम,
0: शफात, क्या सुनेंगे आज?
1: मूवी का नाम है बेवफा सनम।
0: बेवफा सनम, इसका कौन सा नगमा?
1: जी, वो उसका वो है, वो दिल तोड़ के हंसती हूँ, मेरा
0: बहुत ही
1: वफा
0: प्यारा
1: ही मेरी
0: नगमा है
1: याद करोगे। हाँ बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल,
0: आपके साथ और कौन
1: तो
0: सुनेगा?
1: मेरे साथ है मेरे दो तीन दोस्त,
0: नाम बताए।
1: एक है साहिल
0: हाँ,
1: और है अफरोज पुलवामा से, और है नागपुरा की निगर जान।
0: चलिए, आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया मैम, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं बताऊँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ दीदी, और एक भजन गायक भी हूँ
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: जी। हमारा 8 लोग
0: जी।
1: जी हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और 2 ढोलक तो वो तबला बजाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं आप? अब अगर आप भजन कीर्तन में बहुत बिजी रहते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए टाइम कहाँ से मिलता है आपके पास?
1: बताऊं दीदी, जैसे खेतों में जब काम होता है ना,
0: जी।
1: तो मजदूर करके लगाने पड़ते हैं, उसके साथ में हमारे घर वाले लोग भी होते हैं ना, तो वो भी मतलब मजदूर के साथ में खेत में काम करने जाते हैं। और जो भजन और कीर्तन का जो प्रोग्राम होता है हमारा, तो
0: हाँ,
1: वो ज्यादातर वो प्रोग्राम हमें रात में ही होते हैं हमारे यहाँ पे जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो किस चीज़ की खेती है आपकी?
1: हमारे गेहूं और लहसुन की फसल रहती है, और जब बरसात होती है तो फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रेम सिंह जी, बताएं आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैं बताऊं दीदी, आपको मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और उसके अलावा जब हमारे यहाँ पे काफी मतलब इलाका है, पानी की भी उचित व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ लोगों के पास ट्यूबवेल भी है, कुछ लोगों के पास कुएं भी है, और हमारे यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर दूर नदी भी जा रही है वह के, तो वहां से भी मतलब पानी और सिंचाई मतलब उपलब्ध हो जाता है हमें।
0: अच्छा प्रेम सिंह जी, आज के प्रोग्राम में जो आपको नगमा सुनना है उसके बारे में बताएं, कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है अर्पण, और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ जुदाई। जी
0: आपके साथ और कौन सुनेगा?
1: हमारे दोस्त है हेलो फरमाए रेडिया एकता ग्रुप के भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, गौतम राय बोले, आशुतोष अविना, संगीता जी, भोपाल से सुनील झा और रमेश टेलर।
0: चलिए, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।

0: समीन आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश आकाशवाणी श्रीनगर से। ये प्रोग्राम आप हमारी प्राइमरी सर्विस से भी सुन सकते हैं, इसके अलावा आप FM 2 पे भी ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: लोकेंद्र वर्मा जी, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ मैडम, मैं आपका प्रोग्राम नियमित सुनता हूँ, मंगलवार की रात को 10 बजे आता है, मोबाइल ऐप प्रसार भारती के माध्यम से सुनता हूँ मैडम।
0: अरे वाह,
1: और
0: बहुत
1: आज
0: ही
1: से नहीं
0: अच्छी
1: सुन
0: बात
1: रहा हूँ,
0: है।
1: करीब 4 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से ये मोबाइल एप्लीकेशन आया है, जब से।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आकाशवाणी के बाकी कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: नहीं, अच्छे लगते हैं मैडम सभी। एक गजल वाला प्रोग्राम भी आता है रात को,
0: जी
1: बुधवार के दिन, वो आता है मुझे गजल वाला, महफिल ए
0: बिल्कुल,
1: गजल।
0: अच्छी बात है। तो लोकेंद्र जी, ये बताएं आप क्या करते हैं?
1: मैडम मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है, मेरा पार्लर है,
0: जी
1: और पार्लर में मैं काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम नियमित सुनता हूँ, अच्छा लगता है। और रेडियो की दुनिया से मैं करीब 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से,
0: वही
1: मतलब
0: वाह,
1: रेडियो की दुनिया में ही जीता हूँ मैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है कि अभी के दौर में भी इतना सारा प्यार आप रेडियो को देते हैं।
1: जी मैडम बिल्कुल, रेडियो पे अच्छी जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है, और जो भी फोन इन प्रोग्राम जो आते हैं उसमें अलग अलग लिसनर की बातचीत को सुनने को मिलता है, जानकारी वाले प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं, जैसे
0: बिल्कुल,
1: युवाणी आता है, तो युवाणी
0: युवावाणी
1: में आज का युवा,
0: बहुत पहले युवावाणी पे प्रोग्राम्स आते थे।
1: हाँ अभी भी आते हैं कुछ आकाशवाणी केंद्र पे,
0: जी जी
1: अभी भी
0: जी
1: युवाणी प्रोग्राम होता है शाम को।
0: लोकेंद्र जी, क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: मैडम जी, ये कुछ दिन पूर्व अभी आशा भोसले जी है, उनका निधन हुआ है, तो
0: जी
1: उनको मैं श्रद्धांजलि के स्वरूप में मेरा एक सॉन्ग है,
0: जी
1: थोड़ा पुरानी फिल्म है,
0: जी
1: द ग्रेट गैम्बलर।
0: द ग्रेट गैम्बलर का सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: जी, इसमें गाना है दो लफ्जों की, ये है कहानी।
0: बहुत ही अच्छा नगमा है ये, और
1: जी
0: आपके
1: जी
0: साथ कौन
1: मैडम,
0: सुनेगा?
1: मेरे हमारे एक मित्र हैं अहमद लतीफ जी हैं, और फिर ज्यादा मैं सुद्दीन है जम्मू कश्मीर से, मोहम्मद सैयद अब्बासी है बुलंदशहर से, योगेश जी हैं, और गंगाधर जी है, तिलक जी है, और दिलीप पाहुजा जी है, और हमारा एक, हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, इसमें सभी लिसनर जुड़े हुए रहते हैं, सभी लिसनर के लिए रहेगा ये गीत।
0: बहुत ही अच्छी बात, और काफी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आप सुनिए अपने सभी साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी। हमारी बात रोहित जी से हो रही है
0: जी बिल्कुल, कौन बोल रहे हैं?
1: जी? मेरा नाम फहीम है, फहीम शराबा। मैं सोरा अंचार श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। काफ़ी समय के बाद आज आपसे बात हो रही है, तो
0: बिल्कुल फहीम, आप कैसे हैं?
1: जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप सब कैसे हैं? एफएम टू की टीम
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: कैसे?
0: बिल्कुल अल्लाह का करम, सब खैरियत से हैं। फहीम, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज एक लंबे अरसे के बाद आपसे आकाशवाणी के माध्यम से बात हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। तो फहीम बताएं, क्या सुनेंगे आज?
1: मैं इज्जत फिल्म का नगमा सुनना चाहता हूँ, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। रफ़ी साहब और
0: माशाल्लाह, बहुत ही
1: क्या
0: प्यारा नगमा है ये। आपके साथ ये नगमा और कौन सुनना चाहेगा?
1: जी मेरे साथ चंद साथी ये हैं, अरफिन शालबाप, अबूबकर एंड अलीमा जान।
0: जी चलिए फहीम, आप अपने साथियों के साथ इज्जत फिल्म से यह नगमा एंजॉय करें।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत
1: अस्सलाम
0: बहुत
1: वालेकुम।
0: शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।

0: समीन, आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम। हेलो, आपकी फरमाइश। प्रोग्राम की मेज़बान हैं रोहित मुश्ताक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर शब के 11 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है।

0: इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Come Entrance Test, NEET UG 2026.

सुबह का ही पेश होगा, सुबह 6:30 पर, 35 मिनट पर लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह समाप्त करें, सुबह 7:10 पर। प्रोग्राम की मेजबान हैं जहूर अहमद और तस्लीमा।

गुलाम मोहम्मद गनाई सरनल और साथी छकरद्रोह पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे। बस भी निस्वार रास्ता होगी 12:40 पर। प्रोग्राम का मौजू है खुद एतमदी। मेहमान हैं बीनिश बशीर।

एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा दिन में 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सुपहर 4 बजे और गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नश होगा शाम 5 बजे। देहाती पाए अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे शाम 6:10 पर। इसमें मामूल की नशरियात के अलावा बच्चों की महफिल होगी फलवीन टूर। हालात हाजरा की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ नश्र होगा और रात 8:30 पर जिला नामा नश्र होगा। ये जिला नामा जिला कुलगाम से मुतल्लिक है। समीन ये है तफसील हमारे कल नश्र होने वाले प्रोग्रामों की। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समीन हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में इस वक्त शब के 11:15 हुए हैं। अब हमें आज की नशरियात बर्खास्त करने की इजाज़त दीजिए। कल सुबह के 6:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।

फिल्म 100 डेज और आवाज़ें लता मंगेशकर और SB बालासुब्रमण्यम की। और इस समय हम बात कर रहे हैं कि कुछ बातें जो इस समय दिल में हैं उन्हें भी कह लिया जाए। तो कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो शायद हम किसी से कभी साझा ही नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन वो बातें खुद में ही रह जाती हैं। ऐसे में जब गर्दिश में तारे नजर आएं और यादों के सहारे एक सिलसिला बन जाए, एक बात जो दूर दूर तक कोई सुनने वाला ना हो लेकिन फिर भी कहने का दिल कर जाए, तो बेहतर रहता है कि अपने शब्दों को उस आसमां तक पहुंचा दिया जाए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। अगला गीत होगा आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और इसके बाद जो गीत होगा वो आरडी बर्मन का संगीत है मजरू। सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

11:45 और 11 सेकंड हो चुके हैं। ये मधुर गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में। आर डी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत, फिल्म का नाम ये वादा रहा, और आप सुन रहे हैं आकाश।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत। अगला गीत है भूपेंद्र और आशा जी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का है, फिल्म का नाम है एतबार। चलिए सुनते हैं ये गीत, और आज आपके साथ है अर्पना।

जी हाँ, इन गीतों के माध्यम से आप भी जहाँ खो गए हैं उसे कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:53 हो चुके हैं। अगला गीत होगा गुलजार साहब का लिखा हुआ, आवाज है लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम है मौसम। इस गीत के साथ ही अर्पणा को दें इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग

0: बात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सेथो एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। और अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगीन ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगीन ताबीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में हम तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। और अगला गीत आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है आनंद।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, शबनम की तरह ताजोतर इंतजार था। बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था। यूं भी नहीं कि शाम व शहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी

0: विधायकों को टीवी की सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का पहला गीत फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल।

हरेक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, हरेक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, मगर वो बाद में पहले से तर नहीं रहते। हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हां, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया और कहा, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर

कोई सच्चाई नहीं होती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तलाश, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उसी पल कुछ नरम लगती है। तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, उसी के संग मेरी हर घड़ी चमकती है। तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उस पल कुछ नरम लगती है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है आवारा, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सकें।

0: उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दो दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में, मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में, धूल बैठी तो लगा वह असर कम नहीं हुआ। वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए, वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए, पर दिल में उसका लिखा नाम कम नहीं हुआ। पर दिल में उसका लिखा नाम कम नहीं हुआ। वो चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दो रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, आवाज है श्रेया घोषाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET-UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET-UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency, NTA, on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test with the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40,000 to 50,000 crore rupees for the purpose. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation of Prime Minister Narendra Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हमराही में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, रात के इस धीमे ठहरे हुए पहर में जब शहर की आवाजें थम कर सो जाती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब और ख्याल अब भी जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं वो सफर जहां बातें कम होती हैं और एहसास ज्यादा होते हैं। कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो पुराने खतों की तरह खुलती हैं जिनमें किसी की हंसी रखी होती है तो किसी की नाराजगी, तो कहीं कुछ अधूरी मुलाकातें। आज की इस महफिल में हम उन्हीं यादों के कोनों में चलेंगे जहां पुराने हिंदी गीत बसते हैं या यूं कहूं कि अब भी चुपचाप सांस लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जो शायद आपने भी कभी किसी की याद में गाया हो या सुना हो। तो आइए सुनते हैं उस खूबसूरत गीत को जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, यादें भी अपनी आवाज बढ़ा देती हैं। कुछ चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त बीतने के साथ भी दिल की दीवारों पर वैसे ही टंगे होते हैं। बहुत अजीब बात है ना ये। कभी कभी एक पुराना गीत सालों बाद भी आपको वही एहसास लौटा देता है जिसे हम समझते थे कि हम भूल चुके हैं। अगला गीत शायद आपको वही एहसास दोबारा से लौटा दे। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान।

दोस्तों, अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो ये बात याद रखिए कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। कभी कभी यही वक्त हमें अपने सबसे करीब ले आता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस दिल और उसकी आवाज। वो शायद इसलिए क्योंकि उसमें जिंदगी भागती नहीं बल्कि ठहर जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हमारा दिल पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी उम्र भर साथ चलती हैं। हम सब के दिल में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहां एक नाम आज भी हल्के से धीरे से दस्तक देता है, और शायद इसीलिए पुराने गीत हमें इतने अपने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गाए नहीं गए हैं बल्कि वो गीत जिए गए हैं। अब कार्यक्रम का अगला गीत उन एहसासों के नाम जिन्हें कभी शब्द नहीं मिल सके, लेकिन वो हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं आज भी हैं।

दोस्तों, रात का ये हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसी वक्त दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो बातें दिन की रोशनी में हम टाल देते हैं, वो रात की खामोशी में अक्सर चुपचाप आकर हमारे पास बैठ जाती हैं। लेकिन शायद यही तो संगीत का काम है, जो हमारे भीतर के शोर को धीरे धीरे सुकून में बदल देता है। और अब एक ऐसा गीत, एक ऐसा नगमा जो बरसों से तन्हा रातों का साथी बना हुआ है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, ये वक्त के वो टुकड़े हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। चलते चलते एक आखिरी नगमा, उन लोगों के नाम जो याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब जिंदगी में नहीं आते। ये रात सलामत रहे और यादें महफूज रहे और संगीत हमेशा आपके साथ रहे। इस कार्यक्रम से मुझे आपके दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। अलविदा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों

0: तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Investigation CBI has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Exam Entrance Test NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that the special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam.
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।
4: We have handed over this matter to the Central Bureau of Investigation for inquiry and all those involved in such wrongdoing will be sent to jail so that students' future are not adversely affected in any way. Along with this, we will conduct the examination again in a completely fair manner with no irregularities of any kind and no additional fee will be charged for the re-examination.
3: Fees नहीं charge करेंगे।
2: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs have elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS foreign ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation of Prime Minister Narendra Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchases of gold. The Chief Minister of Yogi Adityanath directed that the fleets of the Chief Minister,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की इस शांत रात में हम साथ चलेंगे उन गीतों के जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वो नगमे जिनमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी और अधूरी बातें भी। तो बस खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको चांद दिख जाए तो बस हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा, और अगर किसी की याद आ जाए तो आज उस याद को आने दीजिएगा।

दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी हमें बहुत आगे ले जाती है, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक कोई पुराना गाना हमारे कानों में सुनाई दे

हम फिर वहीं लौट जाते हैं, उसी गली में, उसी मौसम में, अपने लोगों के बीच, जहां किसी ने पहली बार हमारा नाम लेकर पुकारा था। दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों में यही तो बात थी, ये सिर्फ धुनें नहीं थी बल्कि लोगों की अधूरी कहानियां थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाई।

दोस्तों, रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल उतना सच बोलने लगता है। दिन में हम सब कुछ ठीक होने की अदाकारी करते हैं, लेकिन रात किसी अदाकारी को नहीं मानती। वो पूछती है, क्या सच में सब भूल गए हो? क्या सच में अब फर्क नहीं पड़ता? और फिर कहीं दूर रेडियो पर एक पुराना गीत बज उठता है और जवाब खुद ब खुद आंखों में आ जाता है।

आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी पसंद के गीत हमारे साथ रह जाते हैं। फिर चाहे दिन बदल जाएं, साल बदल जाएं या शहर बदल जाए, लेकिन जैसे ही वो दिन सुनाई देती है, हमारा दिल चुपके से कहता है, अरे ये गाना तो उसका था। और शायद इसीलिए हमारी फिल्मों के पुराने गीत आज भी हमें उतने अपने से लगते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ संगीत नहीं था, किसी का एहसास छुपा हुआ था।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है, अरुणिमा और शमीम हैं अभी आपके साथ। दोस्तों, अगर इस वक्त आप सफर में हैं, कोई लंबी सड़क आपके साथ चल रही है, या फिर कमरे की लाइट बंद करके आप चुपचाप बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं, तो ये गीत आपके लिए है। क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे रात की हवा या किसी की कमी, और उस कमी को महसूस करता हुआ ये खूबसूरत सा गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने।

दोस्तों, रात अब और शांत हो गई है और घड़ी की सुइयां 4:48 बजा रही हैं। और ऐसे वक्त में दिल सबसे ज्यादा पुराना हो जाता है। उसे पुराने लोग याद आते हैं, पुरानी जगहें, पुरानी खुशबुएं और वो आवाज जिसे सुने हुए शायद बरसों बीत चुके हों।

कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें एक कोना हमेशा पुराना रहता है। दोस्तों, कार्यक्रम अरुणिमा में आज यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं, तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम भोर सुहानी में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, ये रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है और इस शांत वक्त में अगर आप जाग रहे हैं तो शायद जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभी सन्नाटा भी बहुत खूबसूरत जवाब देता है। बस सुनने वाला दिल होना चाहिए।

दोस्तों, आज की सुबह उन सभी लोगों के नाम जो टूटे नहीं हैं, बस थोड़ा सा थक गए हैं। यकीन मानिए, हर मुश्किल रात के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है। और शायद आज की सुबह आपके लिए वही नई शुरुआत लेकर आई है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, आसमान में अब हल्की रोशनी उतर रही है, जैसे आसमान खुद कह रहा हो, कल जो नहीं हुआ वो आज हो सकता है। उम्मीद कभी शोर नहीं करती, वो बस चुपचाप दिल में उतर जाती है।